मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि तदनुसार 28 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:59 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजे हैं समाचार, अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक TDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि यह त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 200

43 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले सुनिए समूह स्वर में मातृ वंदना।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नज़्म सुनी। अब लीजिए फिर सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये नज़्म।

इसी नज्म के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत आप सुनेंगे भारती गौर से बुंदेली कहानी, देर है अंधेर नहीं। 7:30 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का। 8:30 पर भोपाल से हम अनुप्रसारित करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:00 लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुनिए भागचंद्र लोधी से बुंदेली लोकगीत। 9:30 पर सुनिए एक ही गायक के अंतर्गत

सोनू निगम को। 10:05 पर विविध कार्यक्रम सबरंग में सुनिए बघेली लोकगीत। 10:30 पर सुनिए श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे 11 बजे सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। 12 बजे आपकी फरमाइश। 12:30 पर संग्रहालय से ये कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की प्रस्तुति होंगे। 1:02 पर सुनिएगा महिलाओं का कार्यक्रम, इसमें सुनिएगा जूली प्रजापति से वार्ता, नशा मुक्त परिवार बनाने में महिलाओं की भूमिका। 1:30 पर आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति लोक संगीत, और 1:45 पर सुगम संगीत। इसके बाद आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ही अनुप्रसारित करेंगे 2 बजे फिल्म संगीत, और 2:30 पर आपकी फरमाइश। 5 बजे युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुने श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। 6 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 6:45 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा, इसमें सुनिए रघुवीर सिंह यादव से बुंदेली लोकगीत। 7:20 पर ग्रामीण भाई ग्राम सभा में सुने जनउपयोगी चर्चाओं और लोकगीत पर आधारित कंपेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ, प्रस्तुति होगी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। सही कीटनाशक का चयन और सुरक्षित छिड़काव किसान की पहली जिम्मेदारी विषय पर डॉक्टर अरुण कुमार से बातचीत। इसके अलावा आज की सीख का विषय होगा जोरू ने जातो खुदा से नातो। 8 बजे भोपाल से अनुप्रसारित करेंगे सुर्खियों में।

0: 8:15 पर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत का, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे सुनेगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है खेती किसानी।
1: पंचो आज हम अपन का जानकारी दे रहे हैं, खासतौर से उन पंचन किलाने जो उनके अपने पशुपालक भैया हैं। अपन ने देखो हुए कि अपने पशुन पे परजीवी कीट ज्यादा आक्रमण करते हैं और भैया जे पशुन को

0: खून चूस लेते हैं और संगे संगे अपन ने देखो हुए कि ये अपने पशुओं में अनेक प्रकार की बीमारी सोई फैलावे में मदद करते हैं। इनका अपन जानत हुआ को पंच भैया किल्ली काते हैं, मक्खी हैं, माइट हैं, जुआ हैं, तो इन सबसे अपने पशुओं का सुरक्षित रखवो अपनो परम कर्तव्य है। अपन इनसे अपने पशुओं का बचाए। जिन पशुओं का किल्ली लगी है भैया, तो वे किल्ली का करती है कि ये चमड़ी यहाँ काट के घाव बना देती और जो चर्म रोग जो फैलत है पशुओं का उखा फैलावे में सोई सहायता करती है। जे किल्ली अपने पशुओं को खून पी के और उखा कमजोर कर देती। अगर कहू अपने पशुओं का जे कछु कम मात्रा में किल्ली लगी हुए तो फिर अपन प्रयास करें कि उखा जो है उन्हें निकाल के वो मार देवे। अगर देखें कि ज्यादा मात्रा में हमारे पशु का किल्ली लगी तो उते अपन का करने है भैया कि ई के लाने एक दवाई आउट है। हम अपन दवाई बता रहे हैं आर्सेनिक। कौन सी भैया? आर्सेनिक या मेलाथियोन या सुमिथियोन, ये दवाई है। इन दवाइयों को अपन उपयोग कर सकते हैं। इन दवाइयों का अपन खा 0.04% को घोल बना के उमे पशु डुबे के और निकाल देने हैं। डाई एल्ड्रेन या एल्ड्रेन, क्लोरोडेन, टोक्साफेन अथवा मेलाथियोन, ये दवाई ऐसी हैं कि इनको घोल पशुओं के शरीर पे अपन खा लगा दे तो जो पशुओं में लगी किल्ली है वह मर जाए भैया। इसके संगे संगे अपन का एक बात को और ध्यान रखने हैं कि जोन अपनी सार है पशुशाला जी का है उते भी अपन का दवाइयों को छिड़काव कर देने हैं। कैसे कि जे किल्ली निकल के और पशु में चिपकती संगे संगे जो है पशुशाला में घुस के अंदर जहाँ उनकी सार है, जहाँ जो है तनक उन्हें सुराख मिलो उते घुस जाती है और फिर ये बाद में फिर से अपने पशु के ऊपर चिपक जाए। तो अपन खा जो है पशुशाला में भी इन दवाइयों को छिड़काव कर देने हैं। कछु ऐसी मक्खियां भी हैं भैया जो उनके पशुओं को खून चूसती हैं और फिर ये जो है रोग भी फैलाती। अपन ने एक नाव सुने हुए डांस, डांस के काटवे से पशुओं के शरीर में जलन और बहुत ही भैया दुख पहुंचाऊ थे। अपनो पशु जो है दूध दे वो कम कर दे थे और खाना खावो भी कम कर दे थे। इन मक्खियों का नष्ट करवे के लाने अपनी जो सार है वो की नियमित रूप से अपन साफ सफाई करने है। उते जो गोबर या अपनी घास फूस या पशुओं की जो सानी बची बा जो डरी है वो गंदगी की खा समय समय पे अपन निकालत रहने है और कीटाणुनाशक दवाई जो अपन ने बताई है उको छिड़काव करने है जिससे की मक्खियां नष्ट हो जाए। जुआ सोई भैया अपने पशुओं का हो जाते हैं तो जे जुआ ना हो गए इके लाने सोई अपन एक काम करने हैं। अपन ने देखो हुए कि जिन जानवरन का जुआ हो गए हैं तो उनकी चमड़ी जोन होते भैया उमे जलन होते और खुजलाहट हो वो ईसे का करत अपने पशु जब परेशान हो तो अपने शरीर का दीवार से या पेड़ से रगड़न लगत रगड़त रगड़त भैया होते उनके घाव बन जात फिर घाव बन जात सो जैसे कौआ है वे उ घाव में चोट करके उखा और ज्यादा बढ़ा देते। तो अपन खा जो है जुआ ना हो में इके लाने अपन कीटाणु नाशक दवाई जो उनके हमने पहला बताई है थी उखा अपन खा उनके शरीर के ऊपर लेप कर देने है। और उके लाने अपन का करें कि पहला चूना फिर गंधक के हल्के घोल से अपने पशु के शरीर में छिड़क देवे और फिर खुजली वाले स्थान पे गंधक को जो मरहम होते वो लगा दे तो जो जुआ है वे इनके शरीर में ना आए और कोनो भी कीटाणु नाशक दवाई है उको घोल बना के अपने पशु खा जो है ढार देवे पशु के ऊपर तो फिर जुआ उके मर जाए भैया। अगर कहूँ इस प्रकार से हमारी बताई गई बातन पे अपन ने ध्यान रखो तो निश्चित है कि अपने पशुओं में लगवे वाले जो परजीवी कीट है वे नष्ट हो जाए और अपनो पशु आराम से अच्छो खाना खे और अच्छो दूध भी दे।
1: अभी खेती किसानी का प्रसारण किया जा रहा था मीडियम वेव पर, ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हुए संत गुरु तथा देव समाज की वंदना के साथ गोस्वामी तुलसीदास ने उसी विनीत भाव से खल वंदना भी की है। उन्होंने दुष्टजन को विनम्र प्रणाम किया है, जो बिना प्रयोजन ही हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं, जिनको दूसरे के उजड़ने से हर्ष तथा बसने से विषाद होता है। दुष्टों की ये रीति है कि वे शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर ईर्ष्या की आग में जल उठते हैं, किंतु संतों और दुष्ट जन में एक लक्षण समान होता है। जहां संत जन का विछो प्राण हर लेने वाला होता है, वहां असज्जन का मिलना दारुण दुख देने वाला होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने खल वंदना तो की है, किंतु अत्यंत प्यार से पाले जाने पर भी क्या कौवे मांस खाना छोड़ देते हैं?

0: अभी श्री रामचरित मानस गान का प्रसारण किया जा रहा था। स्वर लक्ष्मी शंकर और सुरेश वाडकर का था और संगीत संयोजन सतीश भाटिया का। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: आज के समय में देखा जाए तो लोग देने की जगह लेने के ज्यादा इच्छुक रहते हैं, और यदि कभी देने

0: की पारी आती है तो उन्हें देने में बहुत कष्ट का अनुभव होता है। जीवन और मृत्यु पर किसी का वश नहीं है, फिर भी जीवन की इच्छा अदम्य है। लोग अपने अपने कारणों से जीवन जी रहे हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा और किसी को परिवार। हर कोई लेना चाहता है, देने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। प्राप्त करने की अभिलाषा इतनी प्रबल होती जाती है कि मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। यहां तक कि सगे संबंधियों का कत्ल करने से भी इंसान नहीं चूकता। हमें अखबारों में रोज ही ऐसी खबरें पढ़ने को मिलती रहती हैं। यही कारण है कि लोगों के इस व्यसन ने समाज में असंतुलन पैदा कर दिया है। लोग पा लेने में ही लगे रहेंगे तो उनका क्या होगा जो निर्बल है, असहाय है, अभावग्रस्त है। समाज तो आज भी दो भागों में बटा है। एक वर्ग उन लोगों का है जो मनचाहा प्राप्त करने में समर्थ हैं, दूसरी ओर वे हैं जिन्हें अन्य का सहारा चाहिए, समर्थ अर्जित करने में लगा है और देने की इच्छा नहीं रखता। तो ये बड़ा संकट है। इस कारण सामाजिक आदान प्रदान रुक जाएगा। जैसे सृष्टि के संचालन में दिन का ही नहीं रात का भी बराबर का योगदान है। शीत ऋतु है तो ग्रीष्म ऋतु का भी स्वागत है। दिन सदा ही रात के लिए स्थान बना रहा है, शीत ऋतु अनवरत ग्रीष्म ऋतु के लिए राह छोड़ रही है। दिन और रात का बदलना, ऋतुओं का आना जाना उनके आकर्षण को बनाए रखता है। मनुष्य में जब देने की प्रवृत्ति जन्म लेती है तो उसका प्रभाव मंडल बनता है। जब वो अपने परिवार के लिए उदार होता है, परिजनों का स्नेह मिलता है, परिवार से निकलकर समाज के प्रति सहयोग और उपकार उसे आदरणीय बनाते हैं। किसी की सहायता से मात्र उसकी आवश्यकताएं ही नहीं पूरी होती बल्कि इससे समाज में सद्गुणों का प्रसार भी होता है। अन्य लोग इससे प्रेरित होते हैं। मनुष्य की सारी उपलब्धियां तभी सार्थक हैं जब समाज में सुख और शांति का वातावरण हो। श्रेष्ठ बीज और उत्तम भूमि मात्र से ही सुंदर फूल नहीं खिलते, इसके लिए उन्हें वायु, प्रकाश और जल की आवश्यकता भी होती है। सद्गुणों के प्रभाव में ही समाज प्रफुल्लित होता है। इनके अभाव में कुछ लोगों का अति धनवान, ज्ञानवान, शक्तिशाली और प्रभावशाली हो जाना कोई मायने नहीं रखता। शेर को वन का राजा कहा जाता है, किंतु वो एक ऐसे राज्य का राजा है जहां सभी उससे आतंकित होकर छिपे फिरते हैं। शेर अकेला होता है जिससे उसकी आन पान अर्थहीन हो जाती है। देना सबसे बड़ा मानवीय गुण है जो जीने का एक निश्चित उद्देश्य प्रदान करता है। महाभारत काल में दानवीर कर्ण ने अपना सब कुछ दान कर दिया और संसार में दानवीर के नाम से अमर हो गए। संसार में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी जीना एक बहुत बड़ा कार्य है। और जो कार्य कोई इंसान करता है तो उसका जीवन सुख और शांति से भर जाता है। आज के तनाव भरे जीवन में यदि हम गरीब, असहाय, बेसहारा लोगों को कुछ देते हैं तो ये हम उपकार नहीं करते वरन उनकी सहायता करते हैं, संसार के प्रति अपना फर्ज अदा करते हैं। और आज हर इंसान के मन में यदि यही भावना हो जाए तो संसार में कोई भी असहाय, गरीब या बेसहारा नहीं रहेगा।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 6:55 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, 7:00 हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
2: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थीं। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51वीं प्रगति बैठक में राज्यों को स्वच्छता, सोलर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बकरीद पर देशवासियों को बधाई दी। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में पढ़ने की अपील की। ईशा शर्मा मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की। और आईपीएल एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक न रहे बल्कि कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों में भी तेजी लाए। छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बिजली सस्ती होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बल मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने लोगों से सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नमाज न पढ़ने की अपील की है। बोर्ड का कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में ही पढ़ी जाए। इसके अलावा कुर्बानी भी तय जगहों पर हो और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न शेयर करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले एक दशक में राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार से जोड़ना और ईपीओएस मशीनों जैसे कई अहम सुधार पहले ही किए जा चुके हैं। यह नई योजना उस कड़ी को और आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। चर्चा का जलवायु के अनुकूल खेती, दलहन तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर जोर रहेगा। भोपाल की ट्विशा शर्मा की मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने देर रात 17 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए राहत देना उचित नहीं था। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जांच नहीं की। अब सीबीआई गिरिवाला सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं ट्विशा के पति समर सिंह पहले से 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर है। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि मतदाता सूचियों की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करते हैं। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार कल पन्ना जिले के बहिरपुरवा गांव पहुंचे और कुआं धसकने से जान गंवाने वाले 5 मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोक में डूबे परिवारों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि ये मजदूर अपने घर परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे और यह हादसा बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिवारों को दिलाया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर

0: समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे।

MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। सांची स्तूप में रखे भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। आज ये अवशेष भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे, जहां 29 मई को राष्ट्रीय संग्रहालय में लोग इनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। वहां की राजधानी उलान बतौर में 31 मई से आम लोगों के दर्शन के लिए अवशेषों को रखा जाएगा। यहां करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए जिले से लेकर गांव तक के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना दिया है। अब कलेक्टर से लेकर पटवारी तक हर स्तर पर कोई न कोई अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगा। शहरी इलाकों में नगर निगम के जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी यह जिम्मा सौंपा गया है। साल 2025 में प्रदेश में बाल विवाह के 538 मामले दर्ज किए गए थे। प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारी है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कल समीक्षा बैठक में बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के अधिकार हेतु देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने सभी विभागों को 7 दिन में पौधारोपण की प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। नई सड़कों, पंचक्रोशी मार्ग और शिप्रा नदी के नए घाटों के किनारे अमलतास, गुलमोहर और पलाश जैसे गर्मियों में खिलने वाले फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आईपीएल एनिमेटर में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। मैच के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं आज राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा और जीतने वाली टीम रविवार को अहमदाबाद में आरसीबी से फाइनल खेलेगी। अब बात मौसम की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हाइड्रेटेड रहने और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं, आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। कल दोनों जगहों पर पारा 46.6 डिग्री रहा। आज यहां तीव्र लू का रेड अलर्ट है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल से 31 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से एक महिला और 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। रतलाम जिले के आलोट के पास चलती कार में अचानक आग लग जाने से एक व्यक्ति झुलस गया, जबकि चालक और एक अन्य सवार ने कूदकर जान बचाई। खंडवा जिला चिकित्सालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। देवास की शाही ईदगाह में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी ने समाज से कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की है। खरगोन जिला सहकारी बैंक की ठिपगांव शाखा में 41 लाख से अधिक के गबन पर 3 कर्मचारी निलंबित। शिवपुरी कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों और कारखानों में बाल श्रम रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरमालवा में पेयजल और हैंडपंप शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू। कट्टी में प्रेमनगर बस्ती के आवासों पर बने 8 अनधिकृत कब्जे जिला प्रशासन ने हटाए। राजगढ़ में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित। और शहडोल में साल खरीफ धान बोनी का लक्ष्य 3000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,50,000 हेक्टेयर किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली सुगंध, इसमें सुनिए भारती गौर से बुंदेली कहानी, देर है अंधेर नहीं।
1: बुंदेली किस्सा है, देर है अंधेर नहीं। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान हते, उनके एक ही लड़का हतो, जी को नाव मनुआ हतो। किसान भैया बिल्कुल गरीब हते, हल्की सी किसानी में काधर हो तो बेचारे अपनी गुजर करवे और अपने लड़का को ख्याल राखवे। मनुआ की माँ तो हल्के ही में गुजर गई थी, यही फिकर उनके पिताजी माने किसान खां हती के हमारे मनुआ को ब्याह कैसे होत। अब हम हैं गरीब किसान, उतनो पैसा टका हमारे हाथ में तो रतनैया, मनुआ के ब्याह बारी आन लगे। किसान भैया ने बिटिया खां देख सुन के मनुआ को ब्याह कर लो। गांव बारन ने किसान की मदद कर दी, मनुआ को जैसो ही ब्याह भाव के किसान भैया चल बसे। अब कहा तो मनुआ बेचारो अकेलो का करे, मनुआ के ससुराल बारन खां बहुत दुख भाव। मनुआ के ससुराल बारे बहुत अच्छे हते, पढ़े लिखे और समझदार हते। वे सोचन लगे देखो हमारे दामाद अकेले रह गए। उनने तुरत ही मनुआ खां खबर पहुंचा दी कि हमारी बिटिया रूपा की विदा करा ले जाओ। और कन लगे कि देखो बेटा, अगर पत्नी अच्छी समझदार साहसी और गुणवान है तो पत्नी से अच्छो मित्र को नहीं होत। पत्नी की लिवाबे की खबर सुनके मनुआ ने घोड़ा सजो ससुराल चल दे। कछु दूर चले उन्हें एक घनो जंगल मिलो, उते सांप और नौरा दो ही लड़ रहे थे। बेचारी मनुआ तो बहुत दयावान और सज्जन हती, उनने जैसे ही सांप खां खून में लथपथ देखो तो वे बोले कि सांप जरूर मर जाए, काय के नौरा को मुकाबला सांप नहीं कर सकते। बेचारी मनुआ ने बहुत सोची कि नौरा और सांप खां अलग अलग कर देवे, अकेले वे अलग कैसे होते। मनुआ ने घोड़ा पे धरी चाबुक और नौरा में दई, सो नौरा अलग होकर गिर पड़ो और मर गो। मनुआ जैसे ही अपने घोड़ा पे बैठन लगे सो सांप ने तुरत ही मनुआ का झपट्टा मारो और मनुआ खा जकड़ लो। मनुआ कन लगे के हमई ने तुम्हें नौरा से बचाओ, हमई खा तुम खावे जा रहे। सांप ने कही के तुमने हमें हमारे दुश्मन से बचाओ, अकेले तुम्हें हम खा जाए। बेचारी मनुआ कन लगे के भलाई के बदले भलाई करो चाहिए, हमारे ते तो ऐसवई हो। सांप ने कही के हमारे ते ऐसवई रीत रिवाज है, भलाई को बदलो बुराई से चुकाओ। मनुआ ने बहुत समझा, सांप ने एक ना सुनी। सांप तो अजगर ठहरो, बड़ो शरीर खाबे की जिद करे। बिचारी मनुआ ने कही के ठीक है, अकेले हमें 8 दिना की मोहलत दे दो। बात पक्की करके बोले हम अपने काम काज करके लौट रहे, फिर हमें खा जाइयो। अजगर सांप मान गो, अजगर कन लगो के तुम भले आदमी लग रहे, अकेले हम तुम्हें 8 दिन की मोहलत तो दे रहे, तुम आ जाइयो। अजगर सांप ने मनुआ खां छोड़ दो। मनुआ ससुराल पहुंच गए, उते उनकी खूब आव भगत भई। अपने पति खां देख के पत्नी रूपा बहुत खुश भई, मनुआ के मुंह पे खुशी तनको नहीं रह गई थी। ससुराल बारन ने अपने दामाद से कही के तुम्हें अपने पिताजी की मौत को बहुत दुख है, यही से अपन उदास से हो। मनुआ की पत्नी रूपा ने पूछी के इतने उदास काय हो। मनुआ ने कछु न बताओ, 7 दिना ससुराल में अच्छी तरह से रहे, 8वें दिना अपनी पत्नी रूपा की विदाई करा के बैलगाड़ी में बैठा के अपने गांव की लाने चल दे। जैसे ही गांव के बाहर निकले उनने सब खां बता दो कि हमें आधी गली में सांप खा ले और तुम सब जने लौट जाओ। पत्नी रूपा बैठी रही और सब उनके घर के सब जने नौकर चाकर सब लौट गए। पत्नी रूपा बोली कि तुम्हें सांप खा ले तो हम कैसे जिंदा रह सकते। मनुआ की घरवारी रूपा हटी हती, बे बोली के हम अपने पति खां छोड़ के नहीं लौट रहे। मनुआ की पत्नी रूपा अपने पति के संग बैठी चली आई। मनुआ ओई जगह पहुंची जिते सांप मिलो तो, सो मनुआ ने गाड़ी से उतर के अजगर सांप खां बुलाओ। अजगर सांप ने जैसे ही आहर सुनी सो वो बामी में से बाहर आ गो। मनुआ ने कही के देखो हम आ गए, अब तुम हमें खा लो और हम अपनो वचन पूरा होगा, हमारा वचन अब हम आ गए। सो सुन के मनुआ की पत्नी रूपा डरा गई और अपने पति के संग ठाणी हो गई। बामी में से फुसका लगाओ।

अजगर सांप मनुआ खा खा भी दौड़ू। मनुआ की पत्नी जोर से चिल्लाई चिल्लान लगी, कन लगी के तुम हमारे पति खा काय खा रहे, बे तो उसे ही दुखी है। सांप उतई रुक गो और मनुआ की पत्नी रूपा खा सब हाल सुनान लगू के देखो जब हम और नौरा लड़ रहे थे सो तुम्हारे पति ने हमारी जान बचाई, अकेले हम तो नेकी को बदलो बदी से चुकाऊ जो हमारा रिवाज है। बेचारी मनुआ की पत्नी रूपा बहुत दुखी हो रही थी, उन्हें अपने ऊपर विश्वास हतु और भगवान पर भरोसा हतु के हमारे पति को बाल बां को नहीं कर सकते। फिर अंगाऊ का भाव बेचारी अजगर के सामने दो हाथ जोड़ के ठाड़ी हो गई और भगवान का सुमरन लगी। सांप से कन लगी के ऐसो उल्टो रिवाज तो हमने कितो नहीं देखो न सुनो। तो अजगर सांप मनुआ की पत्नी रूपा खां सुनान लगो के जे चंदन के पेड़ लगे इनसे पूछो सो तुम्हें ई को उत्तर मिल जाए। बेचारी चंदन के पेड़ के एंगर जाके बोली काय इते ऐसो होता ही के भलाई करवे बारन के संगे बुराई करू जात, जो का कारण है चंदन के बीच में जोन आखरी पेड़ खोखलो हतो ऊ पेड़ ने अपनी पूरी के साथ सुना दई। बहुत पहला इते एक घर में चोरी भई थी, चोर आके ई चंदन के पेड़ में दुख गए थी, पेड़ ने दुकालो तो ढूंढवे बारी लौट गए थी। चोर फिर ने कर आए चंदन के पेड़ में से चंदन की खुशबू आ रही थी, चोर ऊ खुशबू से भींग गए। चोर जिते से निकर में उते से चंदन की भीनी भीनी खुशबू आवे, चोर के शरीर में चंदन की खुशबू हमेशा के लाने बस गई थी। एक दिन अब बोई चोर एंगर के शहर में पहुंचो, उते ठाणे आदमियन खा इत्र की भीनी भीनी सुगंध आई। आदमियन ने पूछी काय भैया इतनो अच्छो इत्र कहाँ से ले आए। चोर ने कही के हमारे एंगर कोनो इत्र वित्र नन्या। एक ने जबरदस्ती करके पूछी के भैया कहाँ से ले आए। चोर ने फिर से कही के हमारे एंगर कोनो इत्र वित्र नन्या, अरे तुम्हारी नाक खराब आए। ने वो आदमी ने जाके उते की राजा से जाके कह दई अपने नगर में एक अजनबी आओ ऊके यंगर बढ़िया सुगंधित इत्र है सो तुम चाहो तो मंगा लो। राजा ने सुनते नहीं ओई अजनबी चोर खा बुलाओ और कही के अरे तुम तो बढ़िया सुगंध मार रहे, जो इत्र तुमने कितने से लाओ। चोर ने कही हमारे यंगर महाराज कौन इत्र वित्त नन्या, चोर का करे वह खुद नहीं समझ में आ रही थी। राजा साहब ने खूब कही इनाम देवे के लाने तैयार हो गो, जब चोर खा मारवे के लाने। राजा ने कही बेचारो थर थे कपन लगू, बोलो राजा साहब हमें ना मारो हम सब हाल तुम्हें बताए दे रहे। चोर ने सब चोरी को हाल राजा साहब खा बताओ और कही के चंदन के पेड़ ने हमें अपनी खोखली खोल में छिपा के राखो, इस चंदन के हृदय की खुशबू हमारे अंग अंग में बस गई। राजा बोले हमें लेवा चलो वो ऐसो अद्भुत चंदन को पेड़ किते है। राजा उते पहुंची और पेड़ खा तुरते ही कटवावे की लाने महल में ले आए और आदेश दे दो। चंदन को पेड़ जोर से चिल्लियान लगो और कन लगो के हमने इन्हें अपने इते राखो और जान बचाई और इनके पीछे हमें अपनी जिंदगी से हाथ धोने पड़ रहे। ऐसे ही इस जंगल में जो को भलाई करे वह बुराई मिलत। बेचारी जो सब सुन के मनुआ की पत्नी रूपा आज घर की अंगर पहुंची। सांप कन लगो पूछी आई उत्तर मिल गो, सांप मनुआ के ऊपर झपटो। बेचारी मनुआ की पत्नी रूपा रोन लगी और बोली पहले हमें खालू हम अकेले का करें, हमारा जीवो बेकार है, तुम हमारी खुशी खा मिटावे पैतुले तो पहले हमें खालू। अजगर सोच में पड़ गो। मनुमा की पत्नी रूपा खा बिलखत देखो सो बामी में वापस घुस गो और जादू की दो गोली रूपा खा दे दें के जे तुम खालू सो तुम्हारे दो बालक खुंजे उन्हीं के सहारे तुम्हारा जीवन कट जाए। मनुआ की पत्नी बोली के बिना पति के आदमी पाप की औलाद के। सांप ने जो ना सोची थी अरे इते की बिटिया तो बहुत विचित्र होती और फिर से बामी में घुस के दो गोली ले आओ और रूपा खा दे दई। कई के एक गोली खा लो एक गोली अंगूठा से रगड़ के ऊ को चूरा जैसे ही नीचे गिरे सुराख में बदल जाए। रूपा ने भी दो गोली अपने पल्लू में बांध ली और तुरते ही एक गोली छोरी और अंगूठा से रगड़ दी और कही के नागराज फिर कहो हमें समझाओ इन्हें कैसे करने का करने कैसे रगड़ने। और तुरते ही भी गोली ले जाके अजगर सांप के ऊपर रगड़ दी, जैसे ही चूरा सांप पे गिरो सो वो अजगर

0: सांप भक के संचलन लगू। पलक झपकतन अजगर सांप राख में बदल गौ। जोन रूपा को जो मोपीरो सो परत जा रहो तू, सुबह रंगत सी आन लगी और रंगत लौटी आई के चेहरा की सुख लगाओ और अपने पति के ताई देखन लगी और कन लगी के जो को भलाई करे ऊ को फल जरूर मिलत, चाहे देर हो जाए और अगर बुराव करे तो ऊ को फल मिलत। देखो तुमने भलाई करी थी सो ऊ को फल मिलो, सांप ने बुराई करी थी सो ऊ को फल पल भर में खात्मा होगा ऊ को। तो बहन हमें ई कहानी से शिक्षा मिली के भगवान के इतना देर चाहे हो जाए अंधे नहीं होत। मनुआ और रूपा खुशी खुशी घर चले गए। रूपा नेक बुद्धि की और साहसी हती, दो ही जने घर के काम काज करन लगे और उनकी गरीबी दूर हो गई।
1: अभी आप सुन रहे थे बुंदेली सुगंध। इसमें आपने सुनी भारती गौर से बुंदेली कहानी देर है अंधेर नहीं। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत है फिल्म जल महल से, आवाज आशा भोसले व साथी की है, गीत मजरू सुल्तानपुरी का और संगीत आरडी वर्मन का है।

अभी आपने फिल्म जल महल का ये गीत सुना। अब लीजिए सुनिए अगला गीत है फिल्म किस्मत से। आवाज़ यशुदास की है, गीत अमित खन्ना का और संगीत बप्पी लहरी का है।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अब लीजिए सुनिए आशा भोसले की आवाज में फिल्म काजल का ये गीत। गीत साहिर लुधियानवी का है और संगीत रवि का।

अभी आपने फिल्म काजल का ये गीत सुना। अब लीजिए सुनिए फिल्म दिल दे के देखो का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत उषा खन्ना का।

काहे का गम, जो होगा देखेंगे हम। होना था दिल को शिकार हो गया, अब तो प्यार हो गया, प्यार हो गया। हाय

सोए सोए सोचेंगे खोए खोए, जागेंगे सोए सोए सोचेंगे खोए खोए। कोई था उन पे निसार हो गया।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: फिल्म संगीत में अब लीजिए सुनिए मुकेश की आवाज में फिल्म लव इन शिमला का ये गीत। गीत राजेंद्र कृष्ण का है और संगीत इकबाल कुरैशी का।

0: अभी आपने आशा भोसले और साथी की आवाज़ में ये गीत सुना। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 8 बज रहे हैं। समाचार प्रभात अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। 8 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: घर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेनदेन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधन परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में

0: संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुग्यो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुग्यो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
3: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
4: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन

0: मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। ऐसा यार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, ऐसा यार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा ऐसा यार। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देशभर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border.

वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है महादेव विनायक रानाडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के

0: दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हरियाणा से हर स्वरूप और दमोह से हर्षिता। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

क्रांति पथ पर चलते हुए सौगंध आजादी की खाई थी, जंजीरों से थे बंधे वो तन, पर रूह नहीं झुक पाई थी। इस पार खड़े थे पहरेदार, उस पार स्वाधीन सवेरा था, वो वीर वहां भी हंसते थे जहां घोर काल का डेरा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने जेल यातनाएं सही, लेकिन अंडमान की सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारियों का जीवन अत्यंत कठिन था। सेलुलर जेल, जिसे क्रांतिकारियों द्वारा वैली ऑफ डेथ माना जाता था, इसका निर्माण ही क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था। इसी जेल में बलिदान होने वाले महान क्रांतिकारी थे मोहन किशोर नामदास। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत से मौत को भी छोटा साबित कर दिया था। सेलुलर जेल की दीवारों ने भले ही उनके शरीर को कैद किया हो, लेकिन उनके संकल्प ने उस काल कोठरी में कैद क्रांतिकारियों के जीवन को उनकी शहादत के बाद बदल कर रख दिया। उनकी जीवन यात्रा पराधीन भारत के उस क्रोध की यात्रा है जिसने अंततः 1947 के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहन किशोर नामदास का जन्म अविभाजित बंगाल के मैमनसिंह जिले के बाजितपुर क्षेत्र में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में यह क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुए आक्रोश ने यहां के युवाओं के मन में तीव्र राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेष रूप से आनंद मठ और उसके कालजयी गीत वंदे मातरम ने इस पूरे क्षेत्र को जागृत कर दिया था। इस वातावरण ने मोहन किशोर नामदास को गढ़ने का काम किया। उनके भीतर स्वाधीनता, स्वदेश और स्वराज की भावना अत्यंत प्रबल होने लगी। भारत भूमि से उन्हें अगाध प्रेम था और अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाकर उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया।

उस समय बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे, जुगांतर और अनुशीलन समिति। मोहन किशोर नामदास ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अनुशीलन समिति की कोलकाता शाखा के साथ की। अनुशीलन समिति मात्र एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि ये युवाओं के लिए एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ केवल व्यायाम नहीं सिखाया जाता था, जैसा कि प्रचारित था कि ये एक व्यायामशाला है, बल्कि इससे बहुत आगे जाकर इसके बृहत्तर उद्देश्य थे। यहाँ युवाओं को शक्ति की उपासना और मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में हुई थी। व्यायाम और साहस इसकी मूल भावना थी। संगठन का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल याचिकाओं या संवैधानिक दायरे में रहते हुए नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है। इसके कई अखाड़े थे जहां लाठी चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी और मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। इसके सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य दिया जाता ताकि उसे पढ़कर वो भारत की आजादी में अपना योगदान देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों। अपना अधिकार मांगने की बजाय उसे छीन लेने में इस संगठन का विश्वास था। इसके सदस्यों को गीता पर हाथ रखकर देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। मोहन किशोर नामदास ने इसी संगठन के कठोर अनुशासन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके लिए यह संगठन एक ऐसे विश्वविद्यालय की तरह था जिसने उन्हें औपनिवेशिक दासता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। इस तरह उनके जीवन को एक दिशा मिली, एक अटल लक्ष्य जिसके लिए जीने और मरने का उन्होंने संकल्प लिया। 1930 का दशक आते आते क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अब तक वो अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों से बदला ले रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन अब हथियार जुटाने के लिए धन की व्यवस्था वो डकैती से करने लगे। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनकी इस कार्रवाई को डकैती कहा गया, जबकि क्रांतिकारी इसे स्वदेशी डाका या राजनीतिक कार्रवाई कहा करते थे। मोहन किशोर नामदास इसी रणनीति में सघन रूप से सक्रिय थे। सन 1932 में क्रांतिकारियों ने धन और हथियार जुटाने के लिए एक डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने नेत्रकोना के पास स्थित एक गांव में सशस्त्र डकैती डाली। मोहन किशोर नामदास और उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ और उसके बाद चली सघन तलाशी में मोहन किशोर नामदास गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तारी के बाद मोहन किशोर नामदास का जीवन अत्यंत कठिन रहा। पुलिस संगठन के अन्य नेताओं के नाम और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारी चाहती थी, इसलिए उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहन किशोर नामदास न झुके न टूटे। भीषण पीड़ाएं सहने के बावजूद उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया। उनके विरुद्ध एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, उन्हें उनकी जेलों से हटाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाए। ब्रिटिश प्रशासन ने तर्क दिया कि ये क्रांतिकारी अपनी भूमि पर जेल में रहते हुए दूसरे सामान्य कैदियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तथा खतरनाक विचारों का प्रसार कर रहे हैं। इस तरह फरवरी सन 1933 में मोहन किशोर नामदास को महाराजा नामक पानी के जहाज पर चढ़ाया गया। उनके साथ इस जहाज में हरे कृष्ण कोनार, सतीश पाखराशी, डॉक्टर भूपाल बोस, डॉक्टर नारायण रॉय और निरंजन सेन जैसे क्रांतिकारी सवार थे। समुद्र की विशाल लहरों के बीच ये यात्रा जैसे इन क्रांतिकारियों के जीवन की सबसे कठिन और अंतिम संघर्ष की प्रस्तावना थी। सेलुलर जेल में कैदियों का जीवन अत्यंत कठिन था। मोहन किशोर नामदास को सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था कोल्हू चलाना। एक कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल तेल निकालना होता था। यदि ये कोटा पूरा नहीं होता तो उसे बेड़ियों से जकड़कर डंडों से पीटा जाता था। भोजन के नाम पर आधा पका चावल, कीड़े लगे गेहूं की रोटियां और उबली हुई सब्जियां दी जाती थीं। इन परिस्थितियों ने कैदियों के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 12 मई सन 1933 को सेलुलर जेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूख हड़ताल शुरू हुई। मोहन किशोर नामदास इस हड़ताल के अग्रणी नायकों में से एक थे। इस हड़ताल में उनके महत्वपूर्ण साथी थे महावीर सिंह और मोहित मोइत्रा। क्रांतिकारी चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें दी जाएं और बुनियादी स्वच्छता की सुविधा दी जाए। ब्रिटिश प्रशासन इसे कैदियों की अनुशासनहीनता मान रहा था और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इन हड़तालियों को जबरदस्ती खिलाकर हड़ताल तोड़ी जाए। 17 मई को जब महावीर सिंह को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई तो दूध फेफड़ों में चला गया और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। मोहन किशोर नामदास इस घटना के बाद भी पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया क्योंकि हड़ताल तोड़वाने के लिए घड़ों में पानी के स्थान पर दूध रख दिया गया था। मोहन किशोर नामदास की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास किया। रबर की नली को उनके नाक के माध्यम से डाला गया। संघर्ष में यह नली उनके श्वसन तंत्र में चली गई। फेफड़ों में दूध चले जाने से उन्हें निमोनिया हो गया और 26 मई सन 1933 को वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से भरे बोरों से बांधकर आधी रात को समुद्र में फेंक दिया गया। मोहित मोइत्रा भी 2 दिन बाद शहीद हो गए। इन 3 क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगें मान ली गईं। इस तरह वो तीनों अपना जीवन पुष्प मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर गए। नमन ऐसी महान विभूतियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिव शेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य

0: सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। ये आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग। आज हमारे कलाकार हैं भागचंद्र लोधी। इनके साथ संगत कर रहे हैं ढोलक पर आत्माराम दुबे और बेंजो पर लखनलाल। आइए सुनते हैं चौकड़िया लोकगीत।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हील्स, मदर की माता।
2: लोकरंग कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए दादरा लोकगीत, भागचंद्र लोधी की आवाज में। इनके साथ ढोलक पर संगत कर रहे हैं आत्मा राम दुबे, बेंजो पर हैं लखन लाल।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: कर ले कमाई, ये कछियाई बुंदेली लोकगीत, आइए सुनिए भागचंद्र लोधी की आवाज में।

आइए लोकरंग कार्यक्रम में एक बार फिर सुनते हैं कछियाई लोकगीत भागचंद्र लोधी की आवाज में।

इसी लोकगीत के साथ ही लोकरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही गायक। इसमें सुनिए सोनू निगम के गाए कुछ फिल्मी गीत। आज हम भारत के प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम की जीवन यात्रा और संगीत के बारे में बात करेंगे। सोनू निगम का जन्म 30 जुलाई सन 1973 को हुआ था और 4 साल की उम्र में ही उन्होंने अपने पिता के साथ मंच साझा किया। उनके पिता आगम कुमार निगम भी गायक थे, इसलिए संगीत का वातावरण घर में ही रहा और बचपन से ही सोनू निगम को संगीत की शिक्षा और मंचीय अनुभव मिला। 1990 के दशक में सोनू निगम ने रेडियो जिंगल और इंडी पॉप के जरिए अपनी पहचान बनानी शुरू की। उनको पहला बड़ा ब्रेक अच्छा सिला दिया जैसे गानों और उनकी उस समय की लगातार मेहनत रही। तो आइए सुनते हैं फिल्म कल हो ना हो का ये गीत। गीत जावेद अख्तर का है और संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

2000 के दशक में कल हो ना हो का टाइटल ट्रैक जारी हुआ, जिसने उन्हें व्यापक लोकप्रियता दिलाई। इसके बाद साथिया फिल्म के लिए गायन करने पर उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इस तरह वे देश के शीर्ष पार्श्व गायकों में शामिल हो गए। सोनू निगम का स्वर बहुत बहुमुखी है। वे रोमांटिक गानों में जितने सहज हैं, उतने ही दुख भरे गानों, भक्ति गीतों और पॉप संगीत में भी। आलोचकों और श्रोताओं ने उन्हें मॉडर्न रफी की उपाधि भी दी है, क्योंकि उनकी गायकी में रफी साहब की तरह सहजता और तकनीकी पकड़ है। तो आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में फिल्म लव इन नेपाल का ये गीत। गीत समीर का है और संगीत निखिल विनय का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही गायक। इसमें आप सुन रहे हैं सोनू निगम को। उनके कई यादगार गाने हैं, जैसे कल हो ना हो, अभी मुझ में कहीं संदेशे आते हैं, दो पल मैं अगर कहूँ। ये गाने विभिन्न मूड और फिल्मों के लिए आज भी बहुत मशहूर हैं। उनके सोलो और फिल्मी दोनों कामों में उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसा दिलाई। सोनू ने हिंदी के अलावा कई भारतीय भाषाओं में भी गायन किया है, जैसे कन्नड़, बंगाली, तमिल, तेलुगु आदि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके सहयोग का जिक्र रहा है। आइए सुनते हैं फिल्म मुस्कान का ये गीत। गीत समीर का है और संगीत निखिल विनायक।

श्रोताओं, 2024 से 2026 के बीच सोनू ने फिर सक्रियता दिखाई। 2025 के रिलीज और 2026 की शुरुआत में कुछ प्रमुख ट्रैक्स और फिल्मों के लिए गायन सुना गया, जिससे वे नए सिरे से चर्चा में आए। मीडिया कवरेज में उनका रैंकअप और नई पीढ़ी में लोकप्रिय होना रिपोर्ट किया गया है। सोनू केवल गायक नहीं है, बल्कि उन्होंने भक्ति संगीत और बच्चों के साथ मिलकर रिकॉर्डिंग जैसे पहले भी की हैं। वे लाइव परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत जाने जाते हैं और उनकी मंचीय ऊर्जा दर्शकों को खूब प्रभावित करती है। तो आइए सुनते हैं फिल्म शुक्रिया का ये गीत। गीत समीर का है और संगीत देवेंद्र योगेंद्र का है।

संक्षेप में कहा जाए तो सोनू निगम की आवाज ने कई पीढ़ियों को छुआ है। उनकी तकनीक, भाव प्रवेश और मंचीय ऊर्जा ने उन्हें भारतीय संगीत का एक अहम पर्चा बना दिया है। वे न सिर्फ एक गायक हैं, बल्कि एक पूरी संगीत यात्रा हैं। उन्होंने अपनी शुरुआती दिनों से लेकर आज तक लगातार मेहनत की है। कई युवा गायकों के लिए वे प्रेरणा स्रोत हैं। आइए सुनते हैं फिल्म चारधाम का ये गीत। गीत विनय बिहारी का है और संगीत सुरेंद्र कोहली का।

0: इसी गीत के साथ एक ही गायक कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। इसमें अभी आपने सोनू निगम के गाए कुछ फिल्मी गीत सुने। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। जिले की चिट्ठी अब हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: गुना जिले की चिट्ठी, आलेख है रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर नवनीत चौबे की।

गुना जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले विकास और उद्योगों की। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। करीब 1060 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री से 1500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़ेंगे तो युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा और इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुना क्षेत्र में सड़क, अधोसंरचना और विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। रोजगार की दिशा में युवा संगम कार्यक्रम भी खास रहा। जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में 850 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 529 युवाओं का अलग अलग निजी कंपनियों में शुरुआती चयन हुआ और मौके पर ही ऑफर लेटर भी दिए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में 3136 हितग्राहियों को 21 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा के हित लाभ बांटे गए। अब बात पानी और पर्यावरण की। जलगंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरा पर भुजरिया तालाब में विशेष कार्यक्रम हुआ। लोगों ने सामूहिक गंगा आरती की, जल संरक्षण की शपथ ली और पानी बचाने का संदेश दिया। वहीं कंजा गांव में कुनो नदी के उद्गम स्थल पर भी बड़ा आयोजन हुआ। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्रमदान कर लोगों को जल संरक्षण का महत्व समझाया। प्रशासन का कहना है कि कुनो नदी संरक्षण और स्टॉप डैम निर्माण से आने वाले समय में सिंचाई और पर्यटन दोनों को फायदा मिलेगा। खेती किसानी की बात करें तो खरीफ 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिले भर में किसान चौपाले लगाई जा रही है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। गांव-गांव कृषि रथ भी पहुंच रहे हैं जो किसानों को नई योजनाओं और खेती के नए तरीकों से अवगत करा रहे हैं। दूसरी तरफ खाद की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। किसानों को ई विकास प्रणाली के जरिए खाद वितरण किया जा रहा है। किसान सुबह 7 बजे से ई टोकन बुक कर अपनी जरूरत के अनुसार खाद ले सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से डीएपी के बजाय एनपीके और नैनो उर्वरकों के उपयोग की अपील भी की है।

0: गेहूं खरीदी का काम भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जिले में अब तक 67,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी की जा चुकी है। किसानों के लिए 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर हुई है और अधिकांश भुगतान सीधे खातों में पहुंच चुका है। अब बात स्वास्थ्य की। जिले में 25 से 31 मई तक विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां और शपथ अभियान चल रहे हैं। लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर बीनागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी। इस दौरान लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा नहीं होने देने की अपील भी की गई। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने पर लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और सिर ढककर बाहर जाने की सलाह दी गई है। पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान चला रहा है। जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोज योग शिविर लगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन लाइव योग सत्रों के जरिए भी लोगों को योग से जोड़ा जा रहा है। विशेष जनजाति समूहों यानी PVTG परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं पात्र लोगों तक पहुंचाई जा रही है। गुना जिला अब अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में जुट गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत जिले की पुरानी पांडुलिपियों और दुर्लभ हस्तलिखित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 70 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेजों को मोबाइल ऐप के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो नेशनल लोक अदालत में जिले भर के 1,382 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा हुआ। इसमें करीब 2,800 लोगों को फायदा मिला और वर्षों पुराने विवाद खत्म हुए। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी पहल हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग ने उत्कृष्ट छात्रावासों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग शुरू करने की तैयारी की है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इसी तरह आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इन योजनाओं के जरिए युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, कानून और सामाजिक कार्य से जुड़े अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं भी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे की। ये आकाशवाणी मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सबरंग। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे बघेली लोकगीत। आज हमारे कलाकार हैं डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा। आइए इनसे सुनते हैं देवी गीत।

सब रंग कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं लोकराग के अंतर्गत बघेली लोकगीत। आइए सुनते हैं कहरवा लोकगीत।

0: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निःशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: Akashwadi at 90.
1: सबरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं बघेली लोक भजन डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा की आवाज में।

सबरंग कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दादरा लोकगीत डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा की आवाज में।

अभी आपने डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा की आवाज़ में ये दादरा लोकगीत सुना। इसी के साथ सबरंग कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम लेकर हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो मित्र दर्शना गोस्वामी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म प्यासा सावन से। आवाज लता मंगेशकर की है, गीत संतोष आनंद का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। ग्राम दुर्गापुर पोस्ट बडेरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मानसिंह आदिवासी मीना आदिवासी बिटिया वैष्णवी और सत्येंद्र कुमार आदिवासी। नीमच मध्य प्रदेश से गोविंद पाटीदार ममता पाटीदार यशस्वी पाटीदार। ग्राम कटकहा जिला पन्ना से प्रताप सेन सविता सेन प्रशांत नेहा अम्बेश कृष्णा और प्रांशी सेन। ग्राम कनाए और करतल पोस्ट पोंगरी तहसील नरेनी जिला बांदा उत्तर प्रदेश से सत्यप्रकाश अहिरवार ठाकुर दीन माता दीन रामहित ओम प्रकाश राम रतन लाला भैया रविशंकर लेख राम शिव कुमार लव किशोर राजकुमारी किरण बबली ज्योति प्रभा पूजा दीपा सुशीला अर्चना रचना नैना मीरा। तो आइए सुनते हैं इन सबकी पसंद पर फिल्म प्यासा सावन का ये गीत।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म अजनबी से। आवाज लता मंगेशकर और किशोर कुमार की है, गीत आनंद बख्शी का और संगीत राहुल देव बर्मन का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। जिला महोबा, ग्राम ममना, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से सोहन सिंह राजपूत। नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन। गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछोर जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मंची नामदेव, शिवम, राहुल, नरेंद्र नामदेव, धांसू नामदेव, छोटू नामदेव, मिन्नी, सपना, खुशबू, रीना, रेखा, ममता नामदेव एवं समस्त नामदेव परिवार। बोरखेड़ा विप्रमल जिला उज्जैन से विनोद मूर्त, नेहा जैन, दीपक मयंक मूर्त, चेतन नाहटा, दीक्षा कुश।

मूरत। यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार।

का मजा लीजिए ए हुजूर।

0: क्या सोच रही हो?
1: मैं?
0: हाँ हाँ
1: कुछ भी तो नहीं।
0: बोलो ना कुछ तो।
2: ऐसा ना हो तू कभी छोड़ दे मेरा साथ,
3: फिर ना कभी कहना दे।

आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म महबूब की मेहंदी से। आवाज लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की है, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। हमारे श्रोता साथी गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, मनकारा मंदिर, बीडीए कॉलोनी, करगिल।

सेना बरेली उत्तर प्रदेश से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, नितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। पुरानी छावनी सकतपुर रोड जिला गुना मध्य प्रदेश से है कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गोलू कृष्णा शिवा, वर्षाबाई, पूनमबाई और मोहिनी कुशवाहा। बिलसराया से रामकेश चक्रवर्ती, पुष्पेंद्र, सोनम गोल्डी, दीप्ति अनुज और ओमजी चक्रवर्ती।

अभी आपने फिल्म महबूब की मेहंदी का ये गीत सुना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आपकी पसंद कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म मेरा साया से। आवाज़ आशा भोसले की है और गीत राजा मेहंदी अली खान, संगीत दिया है मदन मोहन ने। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। मंडी बाजार कोटरा जिला जालौन से प्रेम नारायण सोनी, सुनील सोनी, अभिषेक सोनी, ऋतिक सोनी, वंदना सोनी और रश्मि सोनी। ग्राम व पोस्ट गुढ़ा पाली से जिला टीकमगढ़ से श्रीकांत विश्वकर्मा, सुमित अमित श्रेष्ठी और विनीता विश्वकर्मा। सनावत मध्य प्रदेश से हुकुम चंद कटारिया, पिंटू सेन, हरनिवास खेड़े, दीपक सचिन कटारिया, श्रीमती प्रभा कटारिया, कृष्णा विराज, अर्नव और काव्यांशी कटारिया।

0: आपकी पसंद कार्यक्रम का अंतिम गीत है फिल्म निकाह से। आवाज महेंद्र कपूर की है, गीत हसन कमाल का और संगीत रवि का है। पसंद करने वाले श्रोता हैं आप सब। एमएसडी महाविद्यालय के पास क्रांतित्रा खलीलपुर तहसील को जालौन से कुमारी अंजलि सिंह जाटव, कुमारी आकांक्षा सिंह जाटव, राघवन सिंह जाटव, ऋषि सिंह जाटव, श्रीमती सुनीता सिंह जाटव और झल्लू सिंह जाटव। स्थान पटेरा, तहसील पटेरा, जिला दमोह से श्रीमती राधा ताम्रकार, प्रदीप ताम्रकार, प्रतीक ताम्रकार, प्रिया ताम्रकार और पारस ताम्रकार। ग्राम पोस्ट सौजना उत्तर प्रदेश से घनश्याम दास रजक, कालीचरण रजक, रामदास रजक और संतोष रजक। नेपा नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, प्रखर शाह, कुंशा, परिशाह, पल्लवी शाह, सौरभी शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह और सुषमा कपूर।
1: अभी अलविदा मत कहो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती की न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है,
1: मध्य प्रदेश का। लीजिए सुनिए सजीव फोन कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे। श्रोताओं नमस्ते, मैं हूं नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूं फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। श्रोताओं आज बातें योग की। अमूमन लोगों का सोचना होता है कि जब हम स्वस्थ हैं तो योग की क्या जरूरत है, ना हमें शारीरिक परेशानी है ना मानसिक, तो ऐसे में योग क्यों करें। यहां बता दें योग शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखता है। योग से आनंद की अनुभूति होती है और आनंद को सुख के ऊपर की स्थिति कहा गया है। तो चलिए आज कार्यक्रम में जानते हैं कि हमारे श्रोता योग के बारे में क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ समझते हैं वो योग से। नमस्कार।
2: नमस्ते मैम
1: जी, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, आपका परिचय दीजिए।
2: मैडम मैं सपना एंटी से बोल रही हूँ।
1: जी जी, आपका नाम बता दीजिए।
2: मैडम मैं मिसेस टंडन हूँ
1: जी। आज हम जानना चाहेंगे कि योग जो है, योग के विषय में हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप योग के बारे में क्या कुछ समझती हैं, क्या अनिवार्यता है इसकी अपने जीवन में, ये बताएं।
2: मैडम योगा करने से देखिए, एक तो अपना शरीर स्वस्थ रहता है
1: जी,
2: और साथ में जितने जैसे मसल्स वगैरह वीक हो जाते हैं योगा करने से वो ठीक रहेगा, और शरीर में डिटॉक्स भी हो जाता है, अपने पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी हो जाती है मैम
1: जी। मिसेस टंडन हम ये जानना चाहते हैं कि योगा जो है नियमित रूप से आप करती हैं।
2: हाँ मैम मैं नियमित रूप से करती हूँ, अभी यदि कभी छूट जाता है तो भी मैं शाम को कर लेती हूँ। दिन में अगर मैं करती हूँ, अगर छूट जाता तो मैं शाम को करती हूँ। मेरा भी बहुत वेट बढ़ गया था तो योगा करने से, और थोड़ा सा पौष्टिक भोजन करती हूँ मैं रोज सुबह, मैं जैसे स्प्राउट वगैरह इस तरह के खाना खाती हूँ
1: जी,
2: और घर के भी बच्चे सबको मैं कराना चाहती हूँ योगा।
1: हाँ हाँ, तो इससे आपको लाभ हुआ?
2: बहुत।

0: ना हुआ मैडम, मेरा वेट कम हो गया, मेरे को जो वो स्वेलिंग वगैरह थी और नसों में दर्द वगैरह होती थी उससे बहुत आराम मिलता है मैडम। और जिस दिन अगर छूट जाता है तो फिर मेरे को बहुत दर्द होता है। मतलब और योगा करना चाहिए, सबके लिए योगा जरूरी है। एक आप 5 मिनट का समय निकाल करिए, 5 मिनट के लिए अपने लिए समय निकालिए और योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे माइंड फ्रेश रहता है।
1: जी जी जी।
0: और शरीर स्वस्थ रहता है
1: जी,
0: जो पूरे दिन की दिनचर्या आपकी अच्छी रहेगी।
1: चलिए, तो नियमित दिनचर्या में हम योग शामिल करें।
0: नियमित दिनचर्या अच्छी रहेगी।
1: जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिसेस टंडन आपसे बात करके।
0: थैंक यू मैम।
1: जी, धन्यवाद आपने फोन किया।

0: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार मैडम जी
0: जी, किससे बात कर रहे हैं?
1: मेरा नाम भोली शंकर साहू है, हम नरसिंहपुर जिले से बोल रहे हैं। बढ़िया है मैडम जी।
0: जी, आज बात आपके गीत हमारे में, हमने योग विषय रखा है, तो हम ये जानना चाहते हैं भोले शंकर साहू जी, योगा करने के क्या फायदे होते हैं?
1: बहुत से फायदे मैडम, शरीर स्वस्थ रहता है।
0: हाँ, और हाँ, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी अच्छा रहेगा, मन से भी हम प्रसन्न रहेंगे, है ना? तो क्या योगा आप दिनचर्या में अपनाते हैं?
1: हाँ अपनाते हैं मैडम, अपनाते हैं।
0: तो योगा करने की क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे आप योगा के बारे में लोगों को?
1: ख्याल से मैडम ये है कि रोज योगा करना चाहिए सुबह शाम।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: और यदि वक्त ना मिल पाए तो
1: इतना तो निकालना चाहिए मैडम वक्त की अपन योगा कर सके, ज्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट कम से कम कर सके रोज सुबह शाम।
0: चलिए, सही बात कही आपने भोले शंकर साहू जी, कि हमें नियमित योगा करना चाहिए, शरीर के लिए इतना वक्त तो निकालना ही चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा भोले शंकर साहू जी, नरसिंहपुर से आपने फोन किया।
1: जी
0: जी, बहुत धन्यवाद आपने फोन किया।

0: जी नमस्कार।
1: मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम
0: जी। तो क्या इस गर्मी में भी आप योगा करते हैं?
1: योगा तो नहीं कर पाते हैं।
0: क्यों नहीं?
1: जल्दी सोए।
0: आप योगा नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या योगा की महत्ता को आप मानते हैं, उसके महत्व को समझते हैं?
1: महत्ता तो बहुत ज्यादा है, योगा से सब कुछ लोग रहते हैं, सभी लोग
0: जी। तो योगा करने की सलाह आप देना चाहेंगे लोगों को कि योग करना चाहिए?
1: योगा करें, प्राणायाम करें, सुबह से घूमने जाएं।
0: जी। तो योगा आप क्यों नहीं कर पाते?
1: मैडम क्या है, हमारा काम इस टाइप का है, रात में लेट पहुंचते हैं घर पर
0: जी,
1: थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाते, उस वजह से नहीं कर पाते हैं।
0: जब आप हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं तो योग के लिए भी जरूर वक्त निकालें।
1: बिल्कुल निकालेंगे, आपके कहने पर मैं कल से ही शुरू करता हूँ मैडम
0: जी। बिल्कुल। और देखिए, योग जो है ये भारत से ही शुरू हुआ था
1: जी,
0: है ना? तो हम भारतीय हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ये विधा हमारे पास में है,
1: शिक्षा के उसमें सब्जेक्ट भी लिया गया है।
0: हाँ, योग तो कहीं कहीं पर अनिवार्य विषय भी है, आज भी है ना
1: जी।
0: लेकिन अनिवार्य रूप से इसे हर जगह नहीं अपनाया गया है, है ना? तो योगा जो है वो हमारे जीवन में एक सेहत की कुंजी है वो।
1: बिल्कुल। बाकी मैं ठंड के दिनों में तो प्रयास करता हूँ करने का।
0: चलिए,
1: बाकी अभी तो नहीं कर पा रहा है।
0: नहीं, चलिए जो भी संभव हो मेडिटेशन कर लीजिए, मन की शांति के लिए ही कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप योग को अपनाएंगे
1: जी।
0: जी नमस्कार।

0: हेलो,
1: जय श्री राम।
0: जय श्री राम। बताएं, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं किशन घी वाला बोल रहा हूँ।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: दमोह से।
0: जी, कैसे हैं किशन जी?
1: जी ठीक है, गर्मी बहुत है।
0: जी, गर्मी तो वाकई में बहुत पड़ रही है। किशन जी, हम जानना चाहते हैं, योग यानी होता है जोड़ना या बांधना, है ना?
1: जी।
0: और शरीर और आत्मा को साथ लाने का माध्यम है योग, क्योंकि इससे मन की शांति भी आती है।
1: जी।
0: तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप योग के बारे में? योग जीवन में आपके लिए क्या महत्व रखता है? एक मनोभाव से जोड़ करके आप बताएं, या योग को आप जीवन में किस तरीके से देखते हैं?
1: ये बहुत ही कठिन है। चलो, आपने व्यक्तिगत मुझसे पूछा है
0: जी,
1: तो मैं बताना चाहता हूँ
0: जी
1: कि जीवन में तो बहुत सारी ही कठिनाइयां रहती हैं मेरे ख्याल से।
0: हाँ हाँ,
1: पग पग के ऊपर कठिनाई रहती है, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, कॉम्पिटिशन रहते हैं
0: जी।
1: लेकिन अपने आप को योग से जोड़ना, अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ देता हूँ
0: जी।
1: न्यूट्रल,
0: हाँ।
1: आप समझी ना?
0: हाँ,
1: बिल्कुल
0: हाँ।
1: बिल्कुल शून्य मान के छोड़ देता हूँ कि चलो जो होना है वो तो होना ही है, और एक बिल्कुल ही जीरो समझ के, जैसे अपन अपनी गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ देते हैं ना, जो जिधर जाना चली जाती है, घूमती जाती है, लुढ़कती जाती है, बस ऐसे अपने आप को छोड़ के शांत मतलब मैं देखता हूँ, तभी मुझको लगता है कि मेरे आत्मा जो है बिल्कुल जुड़ रही है उससे, और एक विशेष शांति मिलती है। यही है मेरा।
0: तो आप जो ये शून्य पर जब आप पहुंचते हैं, तो उसे आप मतलब मेडिटेशन से जोड़ करके किस प्रकार से कहेंगे कि एक मानसिक शांति के लिए ये बहुत जरूरी है?
1: एक बहुत ही सुकून मिलता है
0: जी,
1: उस समय जब हम अपने आप को बिल्कुल जीरो जीरो मान लेते हैं ना।
0: हाँ, हाँ,
1: अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं।
0: हाँ, हाँ,
1: किसी काम कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस सच माना तो बस ऐसा ऊपर ही ऊपर दिखता रहता है, आकाश आकाश शून्य दिखता रहता है, विशाल दिखता रहता है।
0: हाँ, हाँ,
1: यही यही एक अनुभव होता है उस समय जो आप पूछ रहे हैं।
0: योग में मेडिटेशन एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है, जिससे मन की शांति के लिए बहुत जरूरी होता है, है ना? और आज तो तनाव हर किसी के जीवन में है, किसी ना किसी प्रकार के व्यवधान जीवन में आ रहे हैं, और उसको हम छोड़कर आगे बढ़े, इसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है।
1: और ये नहीं कि एक मुझे को, हर एक को, जितने भी लोग हैं, जितने भी संसार में, चाहे वो मनुष्य हैं और चाहे वो प्राणी हैं, हर एक को मतलब पग पग के ऊपर कॉम्पिटिशन है, और एक संघर्ष सा है जीवन में, एक संघर्ष सा रहता है, लेकिन अपने आप को शून्य कर लेना, यही एक सबसे अच्छी बात है
0: जी। बहुत अच्छा लगा किशन जी आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि आपके इस शून्य पर ले जाने के बाद मेडिटेशन वाली जो बात आपने कही है, उस पर हमारे श्रोता जो है वो ध्यान देंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी।
1: आपने बड़ा अच्छा विषय चुना है
0: जी,
1: बहुत ही गंभीर विषय चुना है आपने
0: जी। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम जी, मैं श्रोता हूँ मैम जी, और सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ आपके साथ।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया। कौन बोल रहे हैं, आपका परिचय बता दीजिए।
1: जी मैं आपका नीमित श्रोता मैम जी, जय नरसिंहदेव, एफएम रेडियो ग्रुप, ग्राम करकबेल, तहसील लोटेगांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार।
0: आज जो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है उसमें हमने विषय रखा है योग का, तो ये बताइए कि योग शरीर की ताकत, फुर्ती और लचीलेपन को बढ़ाने में सहायक होती है, तो आपको क्या लगता है योग किस प्रकार से सहायता करता है इसके बारे?

0: बारे में आप बताएं।
1: देखिए मैम, योग की बात चल पड़ी है तो मैं सबसे पहले अपनी बात रख दूं कि मैं रोज ही उठ करके जो योग के दो तीन जो होते हैं टिप्स कह सकते हैं उन्हें अपने माध्यम से उपयोग करता हूं। उन्हें सांस जोर जोर से लेना छोड़ना आराम से और शरीर को जो कह सकते हैं हाथ पैर चलाना, कमर को अपने हिसाब से कैसा रखना है, उसके जो मैम जी जो भी तीन चार चीजें करता हूँ मैं लगभग 20-25 मिनट के लिए अपने आप को समय देता हूँ
0: जी।
1: तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई सबको करना चाहिए, ये आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी मेरे ख्याल से आपके शरीर में होना ही नहीं।
0: चलिए, ये तो रही योग में आप जो आप करते हैं, योग के लिए क्या समझाइश देंगे कि क्या लोगों के पास में समय का टोटा है, कहते हैं हमारे पास में वक्त ही नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप?
1: ये सबके पास बहाना रहता है मैम जी, मेरे पास भी समय नहीं है लेकिन मैं समय निकालता हूँ, किसी के पास किसी प्रकार का समय नहीं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें समय निकालना चाहिए। मोबाइल के लिए लोग समय निकाल लेते हैं, रेडियो सुनने के लिए समय निकाल लेते हैं, खाना खाने के लिए समय निकाल लेते हैं।
0: हाँ हाँ, भाई हम रेडियो के लिए तो जरूर कहेंगे कमलेश जी कि हमारा रेडियो किसी के कार्य में व्यवधान नहीं डालता है, है ना? आप योगा करते वक्त भी रेडियो सुन सकते हैं।
1: मैंने मान लो एक बात और रखी, खाना खाने के लिए समय निकाल लीजिए, पानी पीने के लिए समय, तो हमारे शरीर को यदि चलाना है आपको स्वस्थ रखना है तो योग के लिए जरूर बहाना ना बनाए, समय निकालें, इसके लिए जरूर समय पड़ सकता है।
0: कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से हम भोजन या मोबाइल की बात आपने कही है, टीवी की, पढ़ाई की, है ना, अपने मनोरंजन की, हर प्रकार के लिए जब हम वक्त निर्धारित करते हैं तो अपने शरीर के लिए जरूर हम वक्त निर्धारित करें और उसको एक नियमित समय पर करें तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो पाता है तो जब कभी भी इस वक्त मिले हमें योगा जरूर करना चाहिए।
1: और मैम जी एक बात और रख दूं आखिरी जी, कि हम अपने आप को फ्रेश करने के लिए साल में या साल में एक दो बार जरूर कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं सपरिवार।
0: हाँ हाँ,
1: तो क्यों जाते हैं बताइए, ये मेरा प्रश्न आपके अलावा पूरे श्रोताओं से है। तो हम अपने आप को फ्रेश रखने के लिए कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र या कह सकते हैं पर्यटक क्षेत्र में चले जाते हैं, दो चार दिन गुजारते हैं बढ़िया, वो फ्रेश होके जाते फिर अपने काम में लग जाते हैं, तो एक ऊर्जा मिलती है। तो मैं समझता हूँ ये ऊर्जा यदि आपको कायम रखना है तो ये जरूर कीजिए और समय निकालिए।
0: चलिए, बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने, प्रश्न भी आपका ही था, तो बहुत अच्छा लगा कमलेश जी आपसे बात करके। तो ऊर्जावान रहने के लिए योग जरूर।

0: हेलो
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं सोमत सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
0: सोमत सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं आज बात आपकी गीत हमारे में कि कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना? यानी पहले से ही यदि आप चेत के रहेंगे तो बीमारी को आप दूर भगा सकते हैं,
1: हाँ
0: है ना? और इसके लिए योग अगर आप करें तो आप स्वस्थ जीवन जो है लंबे समय तक बिता सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताएं?
1: बिल्कुल बात सही है। योग निश्चित ही हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है और आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनसे हमें निश्चित ही निजात मिलती है। लेकिन मेरा मानना यह है, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने अपने खान पान का विशेष ख्याल रखते हुए और जो बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम लोग घूमने फिरने में भी और ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए मुझे आज तक कभी भी मतलब कोई समस्या नहीं हुई। आप समझिए कि मैं 45 से ऊपर हूँ इस समय, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखते हुए अगर हम चलें तो निश्चित ही हमें आने वाली समस्याओं का कहीं ना कहीं भान होता है पहले से। तो बिल्कुल योग एक ऐसी मैं समझता हूँ।

0: व्यवस्था है जो आसानी से हम लोग इससे जुड़ जाए तो हमारी जितनी भी पेट की समस्या हो, हमारे शरीर में जो अंदरूनी बातें चीज समस्याएं होती है, कई लोगों के जो जन्म से समस्याएं होती हैं, कई लोगों को ठंड सहन नहीं होती, गर्मी सहन नहीं होती, तो इस तरह की जब अंदर की समस्याएं होती है उनसे भी कहीं ना कहीं जूझने में योग का निश्चित ही जो योगदान होता है वो हमारे जीवन को सुरक्षित बनाता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, योग बहुत जरूरी है। और हमारे संगीत, मैं तो संगीत से जुड़ा हूँ तो योग तो निश्चित ही संगीत के लिए वरदान साबित है। आप जितनी लंबी सांस होगी उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होता है। तो निश्चित ही योग करना चाहिए। और ये जरूर है कि इसको करने से पहले जो इसके शिक्षक हैं, जो ज्ञान रखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञान नहीं होता, हम अपने स्तर से इसको करना शुरू कर देते हैं, तो कई बार लापरवाही कह लो या जानकारी कम होने के वजह से कई बार छोटी मोटी समस्याएं भी आती हैं सामने।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है सोमत सिंह साहब आपने, क्योंकि योग आप करेंगे यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की उम्र से जुड़ी हुई कोई परेशानी है या फिर आपके जोड़ या किसी भी अन्य प्रकार की शरीर में कोई समस्या है तो पहले डॉक्टर से आप पूछ लें, है ना, डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें कि हम योग करेंगे तो क्या ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि उससे आपकी तकलीफ और बढ़ सकती है, है ना।
0: हालांकि एक चीज और भी है, अगर हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहते हुए अगर हम योग से जुड़ जाएं तो और इसके फायदे हैं कि और निश्चित ही जो हमारा जीवन है आगे का वो स्वस्थ ही रहकर हम आसानी से बिता सकते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या है तो उसके पहले डॉक्टर से सलाह लेकर ही इससे जुड़े तो निश्चित ही इसका लाभ मिलना तय है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात कही सोमत सिंह आपने और बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
0: जी, किनसे बात हो रही है मेरी?
1: जी, मैं नीतिका वर्मा।
0: अच्छा जी, चलिए, अच्छा लगा, पहली बार बात हुई आपसे।
1: जी।

0: नमस्कार, मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रही हूँ।
1: कैसी है संगीता पटेल जी?
0: ठीक है मैम, आप कैसी हैं?
1: जी हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छी होंगी।
0: जी मैम
1: है ना,
0: सही है।
1: और
0: हाँ
1: हमारे श्रोता जब अच्छे रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये बताइए संगीता पटेल जी, अपनी नियमित जो दिनचर्या है, आप गृहिणी हैं?
0: जी जी
1: चलिए तो दिनचर्या में आप योग के लिए कुछ वक्त निकाल लेती हैं? योगा करती हैं आप?
0: जी मैम, मैं योगा तो नहीं करती हूँ,
1: हाँ हाँ
0: वो अपने जो सुबह के काम हैं वो करती हूँ अपने खुद से।
1: खैर काम तो गृहिणी को करना ही होता है, लेकिन योगा जो है एक अच्छा अभ्यास होता है शरीर के लिए। हालांकि
0: जी मैम
1: गृहिणी जो होती हैं वो घर के जो नियमित कार्य करती हैं तो उसमें काफी कुछ उनका शरीर जो है लचीला सा हो ही जाता है, पर फिर भी एक नियमित अभ्यास के साथ में यदि हम योग को अपनाएं तो शरीर को जो है वो फायदे होते हैं उससे, है ना? है ना, जैसे कि जोड़ में दर्द है या किसी प्रकार से माइग्रेन वगैरह की शिकायत है ना, मानसिक तनाव है, तो मेडिटेशन करें। कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट ही दीजिए, लेकिन योग जरूर कीजिए।
0: जी मैम, अभी तो नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो अभी कर ही नहीं पाती हूँ।
1: हाँ हाँ
0: तो और लेकिन करने की कोशिश करूंगी जरूर।
1: हम यही चाहते हैं कि आज कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे में हमने योग विषय रखा है, और
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: उसको लोग भाग अपनाएं, है ना,
0: जी,
1: केवल बातें नहीं
0: जी,
1: करनी है, इसे अपनाना
0: हाँ,
1: भी है।
0: जी,
1: तो आपको क्या लगता है, योग करने से फायदा होगा आपको?
0: जी मैम क्यों नहीं होगा, जब सबको होता है हमको क्यों नहीं होता, और क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं।
1: हाँ, और ये तो हमारे अपने भारत की विधा है ना,
0: जी मैम
1: तो इसे हम अगर अपनाएंगे तो निश्चित ही हमें फायदे बहुत मिलेंगे।
0: मैं करने लगी हूँ।

0: मैं ग्राम भवाई तहसील नारायणी जिला बांदर से बिलासपुर से बात कर रहा हूँ।
1: कुशवाहा जी, आपसे जानना चाहते हैं
0: जी,
1: योग जो है वो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है
0: जी,
1: तो योगा करना चाहिए, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे और योग के क्या कुछ फायदे हैं इसके बारे में आप कुछ बताएं।
0: योगा से तो हर चीज निर्भर है, शरीर का हर अंग उससे काम करता है। योग जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है।
1: अच्छा
0: जी हाँ,
1: तो योगा को आपने अपनाया हुआ है?
0: जी हाँ।
1: योग करने से आपको क्या कुछ लाभ हुए हैं?
0: जी, उससे मानसिक तनाव भी दूर होता है, शारीरिक बीमारियां भी दूर होती हैं।
1: तो योगा करने की सलाह आप देना चाहेंगे तो मैं श्रोताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे बताएं? इसे शाम को भी किया जा सकता है?
0: जी हाँ,
1: है ना।
0: और सबसे हाँ सबसे ज्यादा फायदेमंद और वो लोग ना करें जिन्हें ज्यादा गंभीर बीमारियां बगैर परामर्श के।
1: बिल्कुल सही, डॉक्टर से परामर्श जरूर लें यदि आपको किसी प्रकार की,
0: जो जिनके लिए अनुकूल है वही,
1: जिनके लिए अनुकूल है वही है करें, और यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ है या बीमारी है तो आप डॉक्टर से परामर्श लेकर के करें।
0: हाँ, फायदे की जगह नुकसान हो मालूम हो, हम लगातार कर रहे हैं तो कहाँ से फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही आपने कुशवाहा जी, बहुत धन्यवाद आपने बात की
0: जी। नमस्कार
1: जी। नमस्कार।

0: श्रोताओं, योग मानसिक विकार दूर करता है, इससे सहयोग की भावना भी बढ़ती है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना योग को अपने जीवन की समय सारणी में स्थान दें। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि योग जरूर अपनाएं, लेकिन यदि आपके पास में किसी प्रकार की परेशानी है शारीरिक, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह परामर्श जरूर लें। योग अपनाएं ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। तो कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हमने बात की योग पर। अब अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को। नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया

0: जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की त्विषा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायालय ने कहा कि त्विषा के शरीर पर पाए गए कुछ घाव उनकी मृत्यु से पहले के थे। न्यायालय ने कहा कि जमानत देते समय पीड़िता के परिवार के आरोपों को नजरअंदाज किया गया। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारियां की जा रही है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के लिए देगी। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आईपीएल क्रिकेट में कल शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। इनमें से विजेता टीम 31 मई रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म याराना से, आवाज किशोर कुमार की, गीत लिखा था अनजान ने और संगीत था राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी ने। महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा था नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत था आरडी बर्मन का। फिल्म थी शान। इस गीत को सुनना चाहा था घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। इसी गीत को सुनना चाहा था लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू ने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म कुदरत से लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना थी मजरू की और उसे संगीत में बनाया था आरडी बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया था गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शोएब पोपरा, मुस्तफा खान, रऊफ और शायद भाई ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म कर्ज से, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद किया था आप सभी ने सिंहपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म आशा से, स्वर लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। रंगीनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्ष्मीपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, दतरंगी से भागवत वर्मा, आप सभी की पसंद पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ये गीत।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब मिलते हैं के बाद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां की दूसरी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: तो प्रस्तुत है धारावाहिक की दूसरी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह अपने मामा करीम के लड़के मुश्ताक से हो जाता है। सारे अपने ससुराल में खुश है। उधर सारे की अम्मी बीमार हैं और उसे याद कर रही हैं। अब आगे
1: अरे आप
2: फाता फाता ये ले दवा, हकीम जी से लाया हूँ, खा ले, आराम आ जाएगा।
1: अब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं बचूंगी शायद।
2: अरे ऐसा क्यों कहती हो, हकीम जी कहते थे दवा खाने और आराम करने से तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
1: आराम कहाँ से होगा, काम कौन करेगा?
2: तुम नाहक ही परेशान होती हो।
1: मैं ना परेशान हूँ तो कौन होगा, और घर में है ही कौन? तुम तो काम पर चले जाते हो दिन भर, घर तो मुझे ही संभालना पड़ता है।
2: फाता, घर तो संभालने से ही संभलता है, तुम ठीक हो जाओ, समय पर दवा ले लेना, जिससे दवा का असर जल्द हो।
1: तुम

0: इतनी फिक्र क्यों करते हो मेरी?
1: अरे मैं ना करूं तो कौन है जो तुम्हारी फिक्र करे?
0: सारे होती तो कम से कम दो रोटियां तो सेक कर खिलाती तुम्हें।
1: अरे बेगम, सारा अपने घर में खुश है, फिर उसे क्यों तकलीफ दें? और फिर बेटी अपने घर में रहे, ये कौन सी अच्छी बात है?
0: बात अच्छे बुरे की नहीं है, समय की है। घर में दो दिन से चूल्हा जला नहीं और तुम भी कुछ खाए नहीं हो। सारे होती तो।
1: अरे बाबा, सारे हमेशा यहाँ थोड़े ही रहेगी।
0: बीमारी में भी देखने नहीं आएगी क्या? इतनी बदल गई मेरी बेटी कि माँ को देखने की भी फुर्सत नहीं उसके पास।
1: अरे ऐसा क्यों कहती हो फाता?
0: अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के इतने दिनों में मिलने क्यों नहीं आई?
1: शादी के बाद बेटी का घर ससुराल ही होता है, और सारे कहीं रहे खुश रहे, और क्या चाहिए हमें?
0: तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या?
1: जाऊंगा, बाजार भी जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है।
0: एक बात कहूं?
1: हाँ कहो, क्या बात है?
0: सारे को बुला लेते, आखिर बेटी है हमारी, उसका चेहरा देख लेती तो शायद मन कुछ हल्का हो जाता।
1: बाजार जा ही रहा हूँ, कोई उधर मिल गया तो करीम भाई को संदेशा भिजवा दूंगा कि सारे को कुछ दिनों के लिए भेज दें।
0: करीम भाई कोई दूर तो रहते नहीं, तुम ही चले जाना।
1: देखूंगा, समय बचा तो जाऊंगा।
0: अरे नहीं जाओगे तो सारे को वे लोग नहीं आने देंगे।
1: करीम भाई कोई गैर तो नहीं कि सारे को नहीं आने देंगे? अरे तुम नाहक ही परेशान रहती हो।
0: मैं बेकार की परेशान नहीं होती। करीम भाई सारे को नहीं आने देंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे।
1: अरे उन्हें बहाना बनाने की क्या जरूरत है? सारे हमारी बेटी है, क्यों रोकेंगे उसे?
0: तुम जो कहो, मैं जानती नहीं क्या कि शादी के इतने दिनों तक ना आने दिया उसे, तो अब क्यों आने देंगे?
1: अरे बेगम, तुम तो परेशान हो जाती हो। अरे परेशान ना हो, आराम करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मैं संदेशा भिजवा दूंगा।
0: ठीक है, जैसा बेहतर समझो।
1: अच्छा, मैं जाता हूँ बाजार।

0: भाई चलो अच्छा हुआ यहाँ बाजार में ही मुलाकात हो गई। सलाम करीम भाई।
1: अरे अरे हसन भाई, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई सुनाइए कैसे हैं?
0: अल्लाह का रहमो करम है, सब ठीक है।
1: लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
0: करीम भाई, परेशानी तो जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है।
1: ओहो, अरे भाई कुछ

0: बताएंगे भी आखिर बात क्या है।
1: अब क्या बताऊं, फाता बीमार है 2 दिनों से, बुखार उतर ही नहीं रहा।
0: अरे अरे तो भाई किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं?
1: दवा लाकर दी है, हकीम जी कह रहे थे दवा जल्द असर करेगी।
0: अरे भाई मौसम का भी असर होता है, अल्लाह से दुआ करूंगा फाता बहन जल्द ठीक हो।
1: करीम भाई, फाता की इच्छा है
0: क्या
1: कि सारे कुछ दिन उसके पास आकर रहे, जिससे उसका मन कुछ हल्का हो जाए।
0: अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई मैं आज ही मुश्ताक के साथ सारे को भेज दूंगा।
1: बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
0: ओहो कैसी बात कर रहे हैं हसन भाई। अरे भाई सारे हमारी बहू है तो आपकी बेटी पहले है, और भाई उस पर आप लोगों का भी हक है।
1: लेकिन सारे के आने से आप लोगों को भी तकलीफ होगी।
0: अरे नहीं, ऐसी क्या बात है, भला सारे अपने घर से अपने घर ही तो जा रही है, और शादी के बाद वहाँ जाना भी नहीं हुआ। अब फाता बहन की इच्छा हो रही है और भाई तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में सारे का अपनी अम्मी के पास होना तो जरूरी भी है। अच्छा तो अब मैं चलूंगा, आपको भी देर हो रही होगी और फाता अकेली होगी।
1: अरे नहीं नहीं, अरे रुकिए, एक एक कप चाय तो पी लें, बैठिए। अरे भाई 2 कप चाय देना।
0: हाँ भाई हसन भाई, तो अब काम कैसा चल रहा है अभी?
1: बाजार तो ठीक है, लेकिन काम आए तो ठीक, मगर अभी तो बिना काम के कई कई रोज गुजर जाते हैं। इसी तरह रहा तो रोजगार ही बदलना पड़ेगा।
0: अरे अरे ऐसी क्या बात है, और भाई कसीदाकारी के कपड़ों की तो अच्छी मांग है बाजार में, और सरकार भी तो मदद देती है।
1: आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकारी माहौल बदल रहा है, हम जैसे लोग भी रोजगार चला पाएंगे क्या?
0: आप भी
1: अरे पहले की बात और थी, लोग बाहर से आते थे और वही लोग हाथों के बने कपड़े खरीदते थे। अरे अब तो उनका आना भी कम हो गया है।
0: अब हम सो तो है भाई, लेकिन हाथ की कारीगरी तो उन्हीं पर टिकी है, और जब वो नहीं तो काम नहीं। सही कहते हो, पर हाँ अब सरकार भी पहल कर रही है, देखना कुछ समय में फिर वही पुराना जैसा माहौल आ जाएगा। और भाई अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो वक्त जल्दी आए। हाँ
1: आमीन।
0: अच्छा भाई तो हसन भाई अब मैं चलता हूँ, वक्त मिला तो मैं जरूर आऊंगा।
1: अच्छा सारे को भेजना ना भूलिएगा।
0: अरे नहीं नहीं नहीं भूलूंगा भाई, आज ही मुश्ताक के साथ भेजूंगा उसे। हाँ
1: अच्छा, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।

0: सारे?
1: अरे आ गए आप?
0: हाँ।
1: मैं अभी चाय बना देती हूँ।
0: मैं जरा मुँह हाथ धो लूँ।
1: चाय के साथ रोटी ला दूँ?
0: नहीं, सिर्फ चाय ही दे दो। कुछ खाने का मन नहीं कर रहा।
1: क्यों, तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
0: हाँ, तबीयत तो ठीक है।
1: फिर परेशान क्यों लग रहे हैं?
0: कुछ नहीं सारे, बस काम का बोझ है और कुछ नहीं।
1: तो इतना काम ही क्यों करते हो जो परेशान रहो?
0: सारे, जिंदगी में पैसे का बहुत मोल है और पैसा आराम से कभी किसी को नहीं मिलता। अब पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
1: वो तो ठीक है, पर पैसे से खुशी किसे मिली है भला?
0: सारे, पैसे से खुशी ना मिली हो, पर ये अच्छा तरीका तो जरूर है।

0: और आज इसी की कीमत है। जिसके पास पैसा है वो खुशी के तमाम पल खरीद सकता है।
1: देखो जी, ऐसी खुशी मुझे तो नहीं चाहिए जिससे आप अपने आप को गला लें।
0: सारे तुम्हें नहीं चाहिए, पर वो सारी खुशी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।
1: अच्छा छोड़ो ये बातें, चाय पी लो और कुछ आराम कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप अपनी सेहत को ही भूल जाएं।
0: ठीक है सारे। अच्छा अम्मी अब्बू कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा?
1: अम्मी पड़ोस में गई हैं और अब्बा बाजार गए हैं, कुछ जरूरी काम था, आते ही होंगे।
0: अच्छा अच्छा,
1: लो अब्बा आ गए शायद, देखो तो जरा।
0: हाँ देखता हूँ। अरे अब्बू।
2: कौन? मुश्ताक आ गए काम से?
0: हाँ अब्बू। अब्बू आप बाजार गए थे?
2: हाँ हाँ भाई, वो कुछ जरूरी काम था। तुम्हारी अम्मी कहाँ है?
0: अब्बू अम्मी तो पड़ोस में गई हैं, आती ही होंगी।
2: और वो सारे कहाँ हैं?
0: सारे रसोई में खाना बना रही है, आप चाय लेंगे?
2: बनी हो तो दे दो।
0: सारे अब्बू के लिए चाय लेती है ना, मैं भी यही चाय ले लूंगा।
2: हाँ काम से कब लौटे बेटा?
0: बस अब्बू अभी थोड़ी देर हुई है। और बाजार में क्या हुआ अब्बू?
2: काम तो हो गया। और हाँ वो सुनो, वो सारे के अब्बा मिले थे।
0: अच्छा?
2: हाँ सारे को कुछ दिनों के लिए बुलाया है। देखो भाई हो सके तो तुम भी साथ चले जाना।
0: नहीं अब्बू, मेरे पास समय नहीं है। और ऐसे भी क्या बात है अभी?
2: अरे अरे मुश्ताक भाई, वो फाता की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ दो दिनों से बुखार है और सारे को देखने की रट लगाए रखी है।
0: अब्बू इस समय सारे का जाना मुमकिन है क्या? मेरे पास वक्त नहीं है।
1: मुश्ताक बेटा, कहाँ जाने की बात हो रही है?
2: अरे बेगम, वो हसन मियाँ मिले थे आज बाजार में। उन्होंने बताया कि फाता बीमार है और सारे को बुलाया है।
1: अरे तब तो सारे को जाना ही चाहिए।
2: अरे भाई, लेकिन मुश्ताक कह रहा है उसके पास वक्त नहीं है वहाँ जाने का।
1: वक्त नहीं है? ये क्या बात हुई भला? तो क्या बहू अकेली जाएगी यहाँ से? अरे लोग क्या कहेंगे, सारे है कहाँ?
0: अम्मी वो रसोई में है।
1: जा सारे को बोल तैयार हो ले, और तू भी उसके साथ चला जा, शायद किसी की जरूरत पड़े वहाँ।
0: ठीक है अम्मी, बेहतर है।
2: और सुनो, वो मैं गाड़ी वाले को बोल आता हूँ, दोनों को छोड़ आएगा।
1: हाँ सारे को बोल तैयार हो ले, रसोई मैं बना देती हूँ।
0: जी सारे, सारे
3: जी
0: जरा इधर आना।
3: आई
1: जी, कहिए।
0: तुम्हारी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, सो हमें जाना होगा।
1: क्या क्या हुआ मेरी अम्मी को?
0: घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। तुम अपने जरूरत के दो चार कपड़े ले लो, अब्बा अभी गाड़ी लाने गए हैं।
1: अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या?
0: अरे नहीं, तुम बेकार में ही इतना घबरा रही हो। तुम्हारे अब्बा बाजार में मिले थे, उन्होंने ही मेरे अब्बा से कहा है, सब ठीक है। तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखना चाहती है।
1: तो अम्मी से जाने को पूछ तो लेते।
0: हाँ हाँ बात हो गई है, और मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अब जल्दी तैयार भी हो लो, नहीं तो देर हो जाएगी। अंधेरा होने से पहले पहुँच जाए तो ठीक होगा।
1: हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार हो लेती हूँ, आप भी अपने कपड़े ले लीजिए।
0: मेरे कपड़े रहने दो।
1: क्यों?
0: तुम्हें छोड़ मैं उसी गाड़ी से वापस आ जाऊंगा।
1: इतने दिनों बाद जाओगे तो रहोगे नहीं क्या?
0: नहीं काम बहुत है, वैसे वहाँ जाने पर देखा जाएगा।
1: ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, बस एक थैले में दो चार कपड़े ही तो रखने हैं।

0: पाता, देख तो कौन आया है।
1: अम्मी, अम्मी।
2: कौन? सारे, आ बेटी बैठ मेरे पास।
1: कैसी हो अम्मी?
2: जिंदा हूँ बस, दो दिन से बुखार शरीर को तोड़े जा रहा है, अब तो लगता है उठ भी नहीं पाऊंगी।
1: ऐसा क्यों कहती हो अम्मी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
2: यकीन नहीं होता।
1: यकीन करो अम्मी, तुम ठीक हो जाओगी, मामूली सा बुखार ही तो है, दवा लेने से ठीक हो जाएगा।
2: मुश्ताक भी आया है क्या?
1: हाँ अम्मी, वो भी आए हैं।
2: मुश्ताक आया है तो अभी रहेगा ना, कुछ बना ले, ऐसा कर उससे पूछ ले क्या खाएगा, वही बना लेना।
1: अम्मी मुश्ताक तो यहाँ शायद ना रहें, उनका काम बढ़ गया है और मौसम भी ठीक है, काम में जाया करने से बहुत नुकसान हो जाएगा।
2: अच्छा, मुश्ताक के लिए चाय बना दे।
1: जी अम्मी, अभी बना देती हूँ।
2: बेटी मैके आती है तो आराम पाती है, पर एक मैं हूँ जो बेटी के पहले मैके वापसी पर भी उसी से काम करा रही हूँ।
1: अम्मी ऐसा क्यों सोचती हो, क्या अब ये मेरा घर नहीं रहा कि मैं यहाँ कुछ काम ना करूँ?
2: तू माँ का दर्द नहीं समझ सकती, तू तो वहाँ भी दिन रात काम करती रहती होगी, यहाँ आई तो भी काम करना पड़ रहा है, ये अच्छा तो नहीं लगता बेटी।
1: अम्मी तू भी क्या कहती है, पहले तू ठीक हो जा, फिर मैं आराम से कुछ दिन तेरे पास रह लूंगी।
2: मुश्ताक मानेगा क्या?
1: पहले तू ठीक तो हो जा, फिर देखूंगी।
2: अच्छा, जरा पानी तो पिला दे बिटिया।
1: हाँ अभी देती हूँ।
2: अब तो एक गिलास पानी भी पिलाने वाला नहीं है कोई।
1: अम्मी लो पानी।
2: दे बेटी।
1: अम्मी तू बेकार की बात सोच सोच कर परेशान क्यों होती है? अब मैं आ गई हूँ ना, अब तू जल्दी से ठीक हो जाएगी।
2: तू एक माँ की बात नहीं समझ पाएगी सारे, मेरी बच्ची अभी तो छोटी है, ये दुनियादारी की बातें तेरी समझ से दूर हैं।
1: ये क्या कह रही हो अम्मी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तू आराम कर, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ और देखती हूँ कि खाने में क्या बन सकता है।
2: अच्छा, मुश्ताक अगर अभी जाएगा तो जल्दी में जो हो सके वही बना ले।
1: ठीक है अम्मी, तुम फिक्र मत करो।
2: सारे।
1: हाँ अम्मी कहो।
2: बेटी तो खुश तो है ना मुश्ताक के साथ?
1: तू ये क्यों पूछ रही है अम्मी, मैं खुश हूँ?
2: नहीं वैसे ही करीम और फजी कैसे व्यवहार करते हैं?
1: बहुत प्यार है उन्हें मुझसे।
2: हाँ भाई, आखिर क्यों ना हो, तू सुबह से रात तक मजदूर की तरह कमर तोड़ मेहनत जो करती है, कोई मजदूर भी इतनी मेहनत ना करे, और तू?
1: अम्मी तू भी कैसी बातें करती है, वो मेरा घर है और मैं काम ना करूंगी तो भला कौन करेगा?
2: तू तो कुछ समझती ही नहीं, वे लोग तुम्हें नौकरानी बना कर रखे हुए हैं और तू खुश हो रही है कि वो तेरा अपना घर है।
1: अम्मी ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, तू नाहक ही परेशान हुए जा रही है।
2: अरे सारे, तू ना उस घर गई होती तो क्या मुश्ताक कभी इतना कमा पाता? अरे वो तो तेरी किस्मत है

0: कि तेरी दुआ से मुश्ताक कमा रहा है और जिसके आमदनी पर तुम्हारा हक होना चाहिए उस पर करीम और फजी राज कर रहे हैं और तुम नौकरानी की तरह दिन रात मेहनत करती हो।
1: अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? करीम और फजी कोई गैर तो नहीं कि वो मुश्ताक के पैसे को खर्च ना कर सके? आखिर वो मुश्ताक के माँ बाप हैं।
0: अरे तू ठहरी भोली भाली, पर करीम और फजी को तो शर्म मानी चाहिए जो बेटे के पैसों से ऐश करते हैं और बहू को नौकरानी बनाकर रखा है, और तू उन्हीं लोगों की तरफदारी किए जा रही है।
1: अम्मी, ऐसा ना कहा करो, अब तो वही मेरा घर है और मुश्ताक मेरा शौहर है। वो जैसी भी रखेगा मैं वैसी ही रह लूंगी अम्मी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि करीम और फजी मेरे साथ गलत सुलूक कर रहे हैं।
0: अरे बिटिया सारे, तुम जो भी कहो पर मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरे भले की कहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के बाद करीम व फजी ने क्या एक बार भी तुम्हें आने ना दिया होता? क्योंकि वो चाहते हैं कि तू अपने माँ बाप को भूल जा और उनके घर नौकरानी बनकर रह।
1: अम्मी,
0: मुश्ताक कमाता है पर आज तक तुम्हें क्या दिया? काम करो तो दो रोटी कोई भी दे दे, पर क्या परिवार ऐसा होता है? जरा सोचो, आज अगर तुम यहाँ होती या मुश्ताक के साथ अलग होती बिटिया, तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा ना होते? तुम्हारे पास ऐशो आराम होता और तुम खुश होती। मुश्ताक भी तुम्हें प्यार नहीं करता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें उस नरक से निकाल कर अलग कहीं रखता जहां तुम खुश होती।
1: अम्मी, अम्मी, मुश्ताक मुझसे प्यार करता है, तू ऐसा मुझसे ना कहा कर अम्मी। और मुश्ताक का घर कोई नरक तो नहीं जो मैं वहां खुश नहीं हूँ?
0: अरे जाने दे सारे, हर मर्द एक जैसा तो होता नहीं, पर होता तो मर्द ही है, और औरत को हमेशा से दूसरे दर्जे का ही मानता रहा है, और मुश्ताक भी तो एक मर्द ही है। अगर वो ऐसा ना होता और तुमसे प्यार करता होता तो वह तुम्हें उस नरक से बाहर कहीं और घर लेकर रखता जहां तुम रानी की तरह रहती। सारे मेरी बात मान, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुश्ताक को कहो कि वो अलग मकान लेकर रहे या यहीं आ जाए, यहाँ घर की कमी तो नहीं?
1: नहीं अम्मी, मैं मुश्ताक के साथ ठीक हूँ, खुश हूँ। और अलग मकान लेकर रहने की क्या बात हुई भला? यहाँ आकर रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। और मुश्ताक को भी
2: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिसकिया की दूसरी कड़ी, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। न्यायालय ने कहा कि जमानत देते समय सत्र न्यायालय ने पीड़िता के परिवार के आरोपों को नजरअंदाज किया। ट्विशा के शरीर पर पाए गए कुछ घाव उनकी मृत्यु के पहले से थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता टोल फ्री नम्बर 1800 11 7800 अथवा नरेन्द्र

0: मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव 29 मई तक भेज सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारियां की जा रही है। हर गौशाला में कम से कम 5000 गौवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गायें होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के लिए देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रीन सिंहस्थ के तहत 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में कल शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इनमें से विजेता टीम 31 मई रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेलेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज और आकाशवाणी की ऑफिशियल न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं के लिए कार्यक्रम महिला सभा।

विद्वान कहते हैं सकारात्मक विचार के कारण कठिन परिस्थितियों में भी हम संतुलित व्यवहार कर पाते हैं। हम जीवन में जितने ज्यादा सक्रिय और सतर्क रहेंगे उतना ही हमारा व्यक्तित्व निखरेगा और सफलता मिलेगी। जब मन वचन और कर्म में पवित्रता नैतिकता होगी तब जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। इसलिए हमें सदैव ऊंचे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। केवल लक्ष्य बनाना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उनकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास भी करना जरूरी है। बिल्कुल, लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए। इसी सुविचार के साथ आज महिला सभा कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो मित्र गुड़िया तिवारी। स्वीकारिए हमारा स्नेह भरा नमस्कार। इसी के साथ करते हैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम महिला सभा में। उम्मीद है आप इस गर्मी के मौसम के बीच में भी अपना ख्याल रख रही होंगी और हमारे कार्यक्रम सुन रही होंगी, खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और साथ ही आप अपने दायित्वों का निर्वहन पूरे जुनून के साथ कर रही होंगी, ऐसी हमें उम्मीद है। आज के समय में कुछ लोगों का मानना है कि नौकरी और व्यवसाय ही काम का वास्तविक रूप है, जबकि घर संभालना उतना महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी से भरा नहीं होता। और इसके ठीक विपरीत सच यह है कि घर संभालना जॉब या बिजनेस से ज्यादा महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी से भरा है। विशेष रूप से महिलाओं के संदर्भ में देखा जाए तो वे दिन रात बिना रुके परिवार की देखभाल करती हैं। उनका काम केवल खाना बनाना या घर की सफाई तक सीमित नहीं बल्कि वो पूरे परिवार की भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। एक महिला सुबह सबसे पहले उठकर पूरे घर की व्यवस्था संभालती है। परिवार के सदस्यों के लिए भोजन तैयार करना, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, बुजुर्गों की देखभाल करना, घर की स्वच्छता, घर के खर्चों का संतुलन बनाए रखना, ये सभी जिम्मेदारी पूरी लगन से निभाते हैं। उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों का कोई निश्चित समय नहीं होता। घर संभालने वाली महिलाओं को दिन के हर समय सतर्क और सक्रिय रहना पड़ता है। घर का प्रबंधन किसी कार्यालय के प्रबंधन से कम नहीं है। जिस प्रकार एक कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर समय, अनुशासन और जवाबदेही का पालन करता है, उसी प्रकार महिलाएं घर को व्यवस्थित रखने के लिए निरंतर कार्य करती हैं। फर्क बस ये है कि घर संभालने के लिए वेतन या छुट्टी के रूप में पहचान नहीं मिलती। यदि परिवार का कोई सदस्य परेशान होता है तो महिलाएं उसे सहारा देकर साहस बढ़ाती हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देना, उनकी पढ़ाई लिखाई और भविष्य की चिंता करना, परिवार में प्रेम एकता बनाए रखना भी उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज कई महिलाएं घर संभालने के साथ नौकरी भी कर रही हैं। ऐसे में वे बाहर काम के साथ घर की जिम्मेदारी भी ईमानदारी से निभाती हैं। इससे उनकी कार्य करने की जो क्षमता है, लगन है, मेहनत है, सभी कितनी महान है ये समझ

आता है। समाज को ये समझने की आवश्यकता है कि घर संभालना कोई छोटा कार्य नहीं, ये एक पूर्णकालिक जिम्मेदारी है जिसे धैर्य, त्याग, प्रेम और मेहनत से पूर्ण किया जा सकता है। महिलाओं के इस योगदान का सम्मान हर परिवार और समाज का कर्तव्य है। सत्यतः यही स्वीकारना होगा कि घर की सुख शांति और परिवार की मजबूती के पीछे महिलाओं की अथक मेहनत और समर्पण छुपा है। इसलिए महिलाओं के कार्य को केवल घर का काम कहकर छोटा नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे एक महत्वपूर्ण फुल टाइम जॉब के रूप में सम्मान देना चाहिए। तो ये तो हमने आपसे थोड़ी सी बातचीत की, घर संभालना भी फुल टाइम जॉब के जैसा ही है इस विषय पर। और आइए अब आपको ले चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनवाते हैं ये बेहद प्यारा सा गीत फिल्म आई हैट लव स्टोरी से। आवाज है श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की, विशाल शेखर का संगीत है और इस गीत की जो शब्द रचना है वो की है कुमार ने। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ सनेरा, सिर्फ तुम्हारा।

0: बहारा, अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाज में। फिल्म थी आई हेट लव स्टोरी। कुमार के शब्दों को संगीतबद्ध किया था विशाल शेखर ने। और कार्यक्रम अभी और भी हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटते हैं अंतराल के बाद।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।
0: ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम महिला सभा में। और आपसे करते हैं एक और चर्चा, नींद की कमी और इसका महिलाओं की सेहत पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज भागदौड़ से भरे जीवन शैली से महिलाओं पर घर परिवार नौकरी और सामाजिक जिम्मेदारियों का कार्य और भी बढ़ गया है। इन सभी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने में, अपने लिए जरूरी चीजें पूरी करने में पीछे हो रही हैं हमारी महिलाएं, जैसे पर्याप्त नींद ना ले पाना। ये केवल थकान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से भी प्रभावित करता है। स्वास्थ्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता। अच्छी सेहत के लिए संतुलित आहार के साथ पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है। हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि एक वयस्क महिला को प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है, क्योंकि नींद लेने से शरीर खुद को पुनः ऊर्जावान बनाता है, मस्तिष्क को आराम मिलता है और शरीर की कोशिकाएं मरम्मत का कार्य करती हैं। नींद से मन शांत और शरीर स्वस्थ रहता है। नींद की कमी से महिलाओं की सेहत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ सकता है, उदास रहना, एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अच्छे स्वास्थ्य के तालमेल में हार्मोन्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नींद की कमी से हार्मोन्स असंतुलन भी पैदा हो सकता है, जिससे मासिक चक्र भी बिगड़ सकता है, मूड स्विंग और थकान भी महसूस हो सकती है। इतना ही नहीं, कम नींद लेने से वजन भी बढ़ सकता है। कम नींद से भूख वाले हार्मोन्स प्रभावित होते हैं, जिससे बार बार भूख लगती है और जंक फूड खाने की इच्छा बढ़ती है। इससे मोटापा बढ़ने का भी खतरा है। एक और आम समस्या महिलाओं में देखने को मिलती है, वो है हेयर फॉल की। गुणवत्तापूर्ण नींद चेहरे पर प्राकृतिक चमक देती है। नींद की कमी से चेहरे पर थकान और काले घेरे और हेयर फॉल के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। रोगों से लड़ने की रोगरोधी क्षमता कम होती है। हृदय से जुड़ी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ता है। इस सब का प्रभाव कार्य क्षमता पर पड़ता है और निर्णय लेने की क्षमता घटती है। तो इससे पता चलता है कि गुणवत्तापूर्ण नींद लेना कितना जरूरी है। इसलिए अच्छी नींद के लिए कुछ जरूरी उपाय अपनाएं, जैसे रोजाना एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालें, सोने से पहले मोबाइल टीवी का उपयोग कम करें, साफ और शांत वातावरण में सोएं, नियमित रूप से योगा करें, मानसिक तनाव कम करें, ध्यान और प्राणायाम करें। महिलाएं परिवार और समाज की आधारशिला होती हैं। यदि उनकी सेहत अच्छी रहेगी, तभी परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहेगा। इसलिए महिलाओं को अपनी नींद और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। पर्याप्त नींद केवल आराम नहीं, बल्कि एक स्वस्थ जीवन की कुंजी है। तो ये तो आपसे बातचीत की, नींद की कमी से महिलाओं की सेहत पर क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि महिलाओं की जो भूमिका है वो ओवरऑल हर जगह आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी ही हम आज एक वार्ता लेकर आए हैं आपके लिए, नशा मुक्त परिवार बनाने में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार हैं जूली प्रजापति। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
3: बहनों, हम सभी जानते हैं कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होता है और महिला उस परिवार की आधारशिला। एक महिला वह बच्चों को संभालती है, बल्कि पूरे परिवार की भावनाओं और भविष्य को दिशा देती है। माँ के रूप में वह बच्चों को संस्कार देती है, पत्नी के रूप में परिवार को संभालती है, बेटी व बहन के रूप में रिश्तों में प्रेम और अपनापन बनाए रखती है। लेकिन आज समाज के सामने एक गंभीर चुनौती तेजी से बढ़ रही है और वह है नशे की समस्या। शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, नशीले दवाएं और अन्य मादक पदार्थ धीरे धीरे व्यक्ति के शरीर और जीवन को कमजोर कर देते हैं। नशा व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है। वह अपने परिवार, समाज और जिम्मेदारियों से दूर होता चला जाता है। बहनों, नशे का सबसे बड़ा असर केवल उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता जो नशा करता है, बल्कि पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कई घरों में मेहनत से कमाई गई आय का बड़ा हिस्सा शराब और तंबाकू जैसी चीजों में खर्चा हो जाता है। घर की जरूरतें अधूरी रह जाती हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, घर में तनाव और झगड़े बढ़ते हैं, कई बार घरेलू हिंसा और अपराध जैसी समस्याएं भी

सामने आती हैं। कई महिलाएं ऐसी परिस्थितियों से चुपचाप सब सहती रहती हैं। वे परिवार को टूटने से बचाने के लिए संघर्ष करती हैं, लेकिन समाज के डर या आर्थिक मजबूरी के कारण खुलकर बोल नहीं पाती। लेकिन अब समय बदल रहा है, आज महिलाएं जागरूक हो रही हैं और नशे के खिलाफ आवाज भी उठा रही हैं। महिलाओं की सबसे बड़ी शक्ति होती है उनका धैर्य, प्रेम और समझदारी। यदि महिला ठान लें कि वह अपने परिवार को नशे से दूर रखेंगी तो बहुत बड़ा बदलाव संभव है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों के संस्कारों की। बच्चे अपने घर के वातावरण से बहुत कुछ सीखते हैं। यदि घर में अनुशासन, प्रेम और एकता का माहौल होगा तो बच्चे गलत आदतों से दूर रहेंगे। लेकिन यदि घर में रोज झगड़े हों, अपशब्द बोले जाएं या नशे का वातावरण हो तो बच्चों के मन पर उसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए महिलाओं की भूमिका यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। माँ बच्चों की पहली शिक्षा होती है। यदि माँ बच्चों को अपनापन बचपन से ही नशे से दुष्परिणाम समझाए, अच्छे मित्र चुनने की सलाह दे और सही गलत की पहचान कराए तो बच्चे भविष्य में गलत रास्ते पर जाने से बच सकते हैं। आज का समय मोबाइल और इंटरनेट का समय है। बच्चे और युवा फिल्मों, सोशल मीडिया और गलत संगति से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। कई बार वे दिखावे या फैशन के कारण तम्बाकू, सिगरेट या शराब की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में माताओं को बच्चों से मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए, उन्हें डराने के बजाय समझाना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। बहनों, कई बार देखा गया है कि जिन बच्चों को घर में प्यार, सम्मान और संवाद मिलता है वे तनाव और गलत आदतों से दूर रहते हैं। इसलिए परिवार में बातचीत का वातावरण बहुत जरूरी है। महिलाएं यदि परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएं, उनकी परेशानियों को समझें और भावनात्मक सहारा दें तो नशे की संभावना काफी कम हो सकती है। बहनों, नशे की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी चीजों से होती है। कुछ लोग दोस्तों के दबाव में सिगरेट पीना शुरू करते हैं। कुछ लोग तनाव दूर करने के नाम पर शराब पीने लगते हैं। धीरे धीरे यही आदत लत बन जाती है। फिर व्यक्ति अपने स्वास्थ्य और परिवार दोनों को नुकसान पहुंचाने लगता है। यहाँ महिलाओं को सतर्क रहने की जरूरत है। यदि परिवार के किसी सदस्य के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखाई दे, जैसे गुस्सा बढ़ना, अकेले रहना, खर्चा बढ़ना, काम में मन न लगना या घर देर से आना, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय रहते बातचीत करें और सही सलाह देना जरूरी है। बहनों, यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से नशे के ग्रस्त में है तो महिलाओं को बहुत धैर्य से काम लेना चाहिए। कई बार गुस्से में लोग अपमानित करने लगते हैं या बार बार ताने देते हैं, लेकिन इससे समस्या और बढ़ जाती है। नशे की लत एक गंभीर मानसिक और शारीरिक समस्या होती है। ऐसे व्यक्ति को सहारे, इलाज और सकारात्मक वातावरण की जरूरत होती है। महिलाएं परिवार के सदस्य को डॉक्टर, परामर्शदाता या नशा मुक्ति केंद्र तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि परिवार उनके साथ है और वे इस बुरी आदत से बाहर निकल सकते हैं। हमारे देश में कई गांवों में महिलाओं ने शराबबंदी आंदोलन चलाकर मिसाल पेश की है। कहीं महिलाओं ने अवैध शराब की दुकानों का विरोध किया तो कहीं जागरूकता रैलियां निकालकर लोगों को नशे के नुकसान बताए। इन प्रयासों से हजारों परिवारों का जीवन सुधरा है। आज स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप
भी महिलाओं को आत्मनिर्भर और जागरूक बना रहे हैं। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, तो वे परिवार में बेहतर निर्णय ले पाती हैं। वे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य को प्राथमिकता देती हैं। आर्थिक मजबूती महिलाओं को अन्याय और बुरी आदतों के खिलाफ आवाज उठाने का साहस भी देती है। बहनों, नशा मुक्त परिवार

बनाने में केवल महिलाओं की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है, लेकिन महिलाएं इस अभियान की सबसे मजबूत कड़ी बन सकती हैं। यदि हर माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, हर पत्नी अपने परिवार को प्रेम और समझदारी से जोड़े रखे और हर बेटी समाज में जागरूकता फैलाए, तो आने वाली पीढ़ी को नशे में बचाया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि नशा कभी समाधान नहीं हो सकता।

0: तो आने वाली पीढ़ी को नशे में बचाया जा सकता है। हमें यह समझना होगा कि नशा कभी समाधान नहीं हो सकता, यह केवल समस्याओं को बढ़ाता है। एक नशा मुक्त परिवार ही खुशहाल परिवार बन सकता है। जहां नशा नहीं होता, वहां प्रेम, सम्मान, स्वस्थ और खुशहाली रहती है। बहनों, आइए आज हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम अपने घर और समाज को नशा मुक्त बनाने में सहयोग करेंगे, बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे और जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे।
1: अभी आपने ये वार्ता सुनी, नशा मुक्त परिवार बनाने में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार थी जूली प्रजापति और उम्मीद है इस वार्ता के माध्यम से आपने जाना होगा कि हमारी महिलाएं किस तरह से नशा मुक्त समाज और परिवार को बनाने में अपना योगदान दे सकती हैं, अपने प्रयास कर सकती हैं। और यहाँ हम रुकते हैं थोड़े से अल्पविराम के लिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: इस अल्पविराम के बाद आपको ले चलते हैं संगीत की ओर और सुनवाते हैं बेहद माधुर्य और शास्त्रीयता का टच लिए हुए ये गीत, कभी अलविदा ना कहना फिल्म से। आवाज है शंकर महादेवन व साथी की। जावेद अख्तर के शब्दों को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

मितवा। अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत शंकर महादेवन वासाथी की आवाज में। फिल्म थी कभी अलविदा ना कहना। जावेद अख्तर के शब्दों को संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। तो ये तो हुआ गीत संगीत, और अब समय है सौंदर्य सलाह का। यदि आप किसी पार्टी, उत्सव या फंक्शन में जाने के लिए तैयार होने का सोच रहे हैं और आपको कन्फ्यूजन हो रहा कि कौन से आउटफिट के साथ किस रंग की किस तरह की चूड़ियां पहने, तो चलिए हम इस काम में आपकी मदद करते हैं। क्योंकि आपका आउटफिट तो लुक को सुंदर बनाता ही है, साथ ही यदि ड्रेस के हिसाब से बैंगल्स का चयन किया जाए तो और भी लुक सुंदर लगता है। यदि आपने सिल्क या बनारसी साड़ी पहनी है तो गोल्डन कंगन या कुंदन की चूड़ियां पहने। कॉटन साड़ी के साथ ऑक्सीडाइज सिल्वर या टेराकोटा चूड़ियां बेहतर विकल्प होंगी। पार्टी वियर साड़ी के साथ स्टोन वर्क या ग्लास चूड़ियां, पेस्टल साड़ी के साथ पर्ल या रोज गोल्ड ब्रेसलेट मैच करें। ये तो बात हुई साड़ी की। यदि आपने हैवी अनारकली सूट पहना है तो आप मैचिंग रंग की ग्लास चूड़ियां मैच करें। सिंपल सूट के साथ पतले ब्रेसलेट या फिर मिनिमल कंगन या पंजाबी सूट के साथ रंग बिरंगी चूड़ियां सुंदर लगती हैं। मिरर वर्क ड्रेस और ऑक्सीडाइज या मेटल चूड़ियों का मैच करें। जीन्स टॉप के साथ मिनिमल ब्रेसलेट या फिर स्मार्ट वॉच के साथ पतली चूड़ी पहने। बोहो ड्रेस के साथ बीट्स और ऑक्सीडाइज चूड़ियां पहने। ऑफिस वियर के साथ हल्के और सिंपल मेटल ब्रेसलेट। गाउन ड्रेस के साथ डायमंड या स्टोन स्टाइल कंगन पहने। ये आपके ड्रेस का सही मैच बनाएंगे। लाल रंग की ड्रेस के साथ गोल्डन या हरे रंग का चयन करें। यदि ड्रेस हरे रंग का हो तो कुंदन या गोल्ड चूड़ियां पहने। ड्रेस का रंग यदि ब्लैक हो तो सिल्वर या डायमंड लुक, सफेद क्रीम पर्ल या हल्का पेस्टल रंग पहने। अगर ड्रेस भारी हो तो चूड़ियां हल्की पहने। हाथ पतले हो तो पतली चूड़ियां अच्छी लगती हैं। त्योहारों पर ग्लास की चूड़ियां पारंपरिक लुक देती हैं। तो बस आप इन कॉम्बिनेशन का ध्यान रखते हुए अपना लुक कंप्लीट करिए और देखिए सबसे सुंदर और स्टाइलिश आप ही लगेंगे। तो ये तो आपसे हुई सौंदर्य सलाह में आपसे थोड़ी सी बातचीत की कि आप ड्रेस के हिसाब से चूड़ियों का चयन किस तरह से करें। और बहनों देख रही हैं कि इस समय मौसम काफी हार्ड है, गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में हमें लू से बचाव करना है, छोटे छोटे उपाय अपनाकर। सबसे अधिक गर्मी और लू 11 से 4 5 के बीच पड़ती है, यानी इस समय लू लगने का रिस्क ज्यादा रहता है। तो इस समय घर से बाहर आप निकलने से बचें, जरूरी होने पर ही बाहर जाएं। खाली पेट बाहर निकलने से लू लगने का खतरा और भी ज्यादा रहता है। जब भी घर से निकलें कुछ खाकर ही निकलें। कोशिश करें आम का पन्ना, नींबू पानी आहार में शामिल करें। डिहाइड्रेशन से बचने खूब पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या फिर ORS का घोल भी आप ले सकते हैं ताकि शरीर में पानी की कमी न होने पाए। हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिर को स्कार्फ, गमछे या फिर छाते से ढककर ही निकलें, सीधे आपकी स्किन पर धूप ना पड़े। घर को ठंडा रखने के लिए खिड़कियों के पर्दे लगाकर रखें, कूलर पंखे का उपयोग करें। इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। बच्चे तो कभी भी धूप में निकल सकते हैं, तो उनको खेलने के लिए सुबह या फिर शाम का समय ही चुनें। दोपहर के समय बच्चों को बाहर न खेलने दें। इसके अलावा लू लगने के लक्षणों की पहचान करें, जैसे चक्कर आना, तेज बुखार, कमजोरी, उल्टी, बेहोशी। जैसे कोई लक्षण दिख रहे हैं तो आप लापरवाही ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर की सलाह लें। और मानवता का फर्ज निभाते हुए पक्षियों के लिए भी घर में पानी का इंतजाम करें। तो इस तरह इस लू गर्मी के प्रभाव से आप भी बच सकते हैं और इस मौसम को भी हम मात दे पाएंगे। तो जानकारी, मनोरंजन और इतनी सारी बातों के बीच समय कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। अब चलने का समय हो रहा है, तो चलने से पहले एक बात कहना चाहेंगे। जुनून ही ऊर्जा है। जो चीजें आपको उत्साहित करती हैं उन पर ध्यान केंद्रित करने से मिलने वाली शक्ति को आप महसूस करें और हमारे कार्यक्रमों से जुड़ी रहें, सुनती रहें, खुद को उत्साहित रखें। मिलते हैं फिर महिला सभा के एक नए अंक के साथ। अभी अनुमति दें गुड़िया तिवारी को। नमस्कार।

महिलाओं के लिए महिला सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मीडियम वेव 444.4 मीटर अर्थात 675 किलो हर्ट्ज और आकाशवाणी के ऑफिशियल न्यूज ऑन AIR ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब प्रस्तुत किया जा रहा है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के भेंट है। आज इसमें आप सुनेंगे रेवाराम मेहरा के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लोक भजन से।

रेवाराम मेहरा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये बारहमासी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की भेंट था। आकाशवाणी का ये मध्य प्रदेश प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे जबलपुर केंद्र के योगदान से सुमति महेश्वरी के स्वर में भजन। सबसे पहले सुनते हैं देशगान।

0: सुनीति महेश्वरी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भजन। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में उमराव जान फिल्म की ये गजल।

आशा भोसले की ही आवाज में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है जीने की राह। इस गीत में आशा भोसले के साथ आप सुनेंगे उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाज।

0: जीने की राह फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। यह अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन से संबंधित है। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, आईसीएआर और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
1: कहने के लिए नहीं, कह देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसलिए मैं कहता हूं अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले। अभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया, 2 दिन का ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। दोनों शहरों में आज भी तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग और रोजगार विभाग द्वारा कल युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया। और गुना में दिव्यांगजन जागरूकता, संवेदनशीलता एवं समावेशी अभिषण योजना विषय 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ।

0: इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
4: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री

0: सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए

0: अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जलडमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहाँ 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुँचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज 2 सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
0: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
4: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मना

0: मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादेसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइश को पूरी करने का वक्त आ गया है और इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं मृत्युदंड फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत आनंद मिलिंद।

का है। इस गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। आप है दिल्ली से हमारे श्रोता कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ये हमें फरमाइश मिली है ओम प्रकाश नेमा, श्रीमती किरण नेमा, आकाश, विकास, नंदनी, शिवांश और समस्त नेवा परिवार की। और साथ ही साथ इस गीत की पसंद में हम शामिल कर रहे हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा का ये पत्र। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं मृत्युदंड फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत विजीत गवाड़कर, राही, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश, सुखी और विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली, श्वेता, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर। साथ ही साथ इसकी फरमाइश हमें मिली है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा, और इसी गीत को पसंद किया है ग्राम धुरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड साहू, रुस्तम साहू, नेतराम साहू और भूपेंद्र साहू ने।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंतर्गत, उसके लिए हमें फरमाइश मिली है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साविर राही महराज जहां, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता प्रिंस सिद्धांत, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश सुमित और ध्वनि, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, और इसी गीत को पसंद किया है धमनी छत्तीसगढ़ से समेलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर ने। आप सभी सुनना चाहते हैं अवतार फिल्म का।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। इसी गीत को पसंद किया है प्रमिलागंज आलोट जिला मध्य प्रदेश, रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। साथ ही साथ ये खत हमें मिला है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। और इसी गीत को पसंद किया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजदाबा खान और राउफ भाई, शाहिद भाई। इन सभी की पसंद पर प्यासा सामग्री खरीदी।

0: लता मंगेशकर की आवाज में प्यासा सावन फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। ये अवशेष भगवान बुद्ध के दो शिष्यों सारिपुत्र और मौद गल्यायन से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एफआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडिया व्यू पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडिया व्यू पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की भेंट है। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 5:33 पर, 6:30 पर, 8:15 पर और रात 9:30 पर। शाम 6 बजे सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम और 7:21 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में।

रात 10 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन, राग होगा गोरख कल्याण। ये थी जानकारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02 सुबह है। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

नमस्कार। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। संध्या के 5 बज चुके हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। लीजिए सुनिए सभा के आरंभ में युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे युवाणी कार्यक्रम में। आज मैं हूँ आपके साथ पारुल पटेरिया और मेरे साथ हैं
1: शिवांशु प्रजापति।
0: तो स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों जैसा कि आपको ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत में हम लेकर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, तो हमारी आज की पहली चर्चा का विषय है ईद उल जुहा। साथियों ईद उल जुहा मुसलमानों का प्रमुख त्योहार है, जिसे बकरीद भी कहा जाता है। ये त्योहार त्याग

0: कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ दीदी।
0: आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: बहन जी, फिल्म का नाम तो है तलाश और गाने की बोल इस तरह से है, आज क्या जुमली याद, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगन।
0: जी चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड से, आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: ग्राम सनोतिया, जिला गुना, मध्य प्रदेश से बहन जी, आपका भाई मांगीलाल बात कर रहा हूँ
0: जी। मांगीलाल जी,

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताइए, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: सर, मैं तहसील बहादुरपुर जिला अशोकनगर से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूं।
0: सूर्य प्रताप जी, आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, धन्यवाद। आप कौन बात कर रहे हैं?
0: मैं शिवांशु प्रजापति।
1: अच्छा अच्छा
0: जी, आज फरमाइश बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम?

0: प्यार, फिल्म का नाम है प्यार का रोग।
1: प्यार का रोग फिल्म का कौन सा गीत?
0: उसमें एक गाना है जा जा के कहां मिन्नतें फरियाद करोगी।
1: बहुत ही बढ़िया गीत है सूर्य प्रताप जी।
0: हाँ
1: जी जी जी। और क्या करते हैं सूर्य प्रताप जी आप?
0: सर हम खेती बाड़ी करते हैं और आपके कार्यक्रमों से भी जुड़े रहते हैं। मैं तो आकाशवाणी छतरपुर का नियमित श्रोता हूँ।
1: और किस माध्यम से सुनते हैं आप आकाशवाणी छतरपुर को? रेडियो के माध्यम से या न्यूज ऑन एआईआर के माध्यम से?
0: सर मैं तो रेडियो के माध्यम से सुनता हूँ, पर ही कार्यक्रम सुनता आ रहा हूँ। कम से कम 10-12 साल हो गए मुझे रेडियो चलाने।
1: जी जी चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आइए सूर्य प्रताप जी सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।
0: सर बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: हेलो नमस्कार, आप कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: ये मैं बुंदेलखंड की धरती राम की तपोभूम चित्रकूट धाम के पहली ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूं और आपको सत सत राम राम भेज रहा हूं।
0: जी आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मुझे फिल्म गुलामी का गीत सुना दीजिए, देहाल मस्ती मकुम्बरम, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन।
0: जी बहुत ही प्यारा गीत है ये, तो चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।
1: जी नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताइए कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: सर मैं पंचीराम शर्मा बोल रहा हूं, जम्मू कश्मीर जिला डोडा ट्रैफिक शास्त्री गांव का।
0: जी पंचीराम जी आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। फरमाइश बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर आज मैं गाना सुनूंगा दो आंखें बारह आपका सिंह झूठों का बड़ा सरदार जी सरताज निकला।
0: जी जी और क्या करते हैं पंचीराम जी आप?
1: सर मैं हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: खेती करते हैं आप, चलिए बहुत ही बढ़िया बात है। और कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हो आकाशवाणी छतरपुर से?
1: मैं सभी कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: चलिए बढ़िया, ऐसे ही आप सुनते रहिए आकाशवाणी छतरपुर को। तो आइए पंचीराम जी सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फ्रेंड जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं दादू भाई कपूरवा तिंदवारा जिला बांदा उत्तर प्रदेश से रोशन सिंह बात कर रहा हूँ। दीदी
0: जी, रोशन जी कैसे हैं आप?
1: जी दीदी अच्छे हैं।
0: जी जी, क्या करते हैं रोशन जी आप?
1: जी दीदी मैं घर पर रहता हूँ।
0: जी, और आकाशवाणी परिवार से कब से जुड़े हुए हैं?
1: जी दीदी सन 2002 से।
0: चलिए, ये जानकर अच्छा लगा हमें। आपको आकाशवाणी के कौन कौन से कार्यक्रम सबसे पसंद है?
1: सबसे ज्यादा तो दीदी मुझे ये वाणी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्ञानवर्धक चीजें आती हैं।
0: जी
1: सुनता रहता हूँ। ज्ञान सरोवर है, कॉफी हाउस है, सारे कार्यक्रम, मतलब सारे कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: जी जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम रहेगा दुआ। तुम थे हमारे अब गैर हो गए, सारे जज्बात जुबैर हो गए, लेकिन तुम हमें भूल न जाना, दुआ में याद रखना।
0: जी जी, चलिए फिर सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।
1: मैं आपका नाम जानना चाहूँगा।
0: जी, मैं पामी पटेलिया बात कर रही हूँ। नमस्कार।

0: हेलो हेलो फ्रेंड्स, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नाम बताइए, कौन और कहां से बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार भैया, मैं दीपक सिंह गुर्जर बात कर रहा हूं, ग्राम खकल, तहसील कौच, जिला जालौन से।
0: दीपक सिंह गुर्जर जी, आपका हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद भैया।
0: जी जी, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे हेलो फ्रेंड्स कार्यक्रम में?
1: आज आप सुनवा दीजिए फिल्म खानदान गीत के बोल है, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला तो पुराना है।
0: बहुत ही प्यारा गीत है दीपक जी ये।
1: जी धन्यवाद।
0: जी जी, क्या करते हैं दीपक जी आप?
1: ये मैं खेती किसानी कर रहा हूँ, मैंने बीएड कर लिया है।
0: जी, खेती किसानी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी चल रही है। और आपके यहाँ का मौसम कैसा हो रहा है इस समय?
1: मौसम तो भैया कुछ मत कहिए, बहुत ही बेहाल है, बहुत ही तेज धूप निकल रही है, बहुत ही लू चल रही है, 45-46 के पार पारा जा रहा है।
0: जी जी, कौन कौन से कार्यक्रम पसंद करते हो आप आकाशवाणी छतरपुर से दीपक जी?
1: आकाशवाणी छतरपुर के ऐसे कोई भी कार्यक्रम नहीं है जिसे मैं पसंद नहीं करता हूँ या सुनता नहीं हूँ। आपके सुबह वंदना से लेकर रात्रि के समाचार तक सारे कार्यक्रम सुनता हूँ। योगवाणी, ग्राम सभा, महिला सभा और विशेष कार्यक्रम आते हैं, भेंट वार्ताएं, वार्ताएं, परिचर्चाएं, सारे कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: जी जी, ऐसे ही आप आकाशवाणी छतरपुर को सुनते रहिए। किस माध्यम से सुनते हैं आप, रेडियो के माध्यम से या न्यूज ऑन AIR के माध्यम से?
1: जी बिल्कुल, दोनों माध्यमों से सुनता हूँ मैं,
0: रेडियो के माध्यम से भी और न्यूज ऑन AIR के माध्यम से।
1: जी बिल्कुल, घर पे रहता हूँ तो रेडियो पर ही सुनता हूँ, और घर से कहीं बाहर रहता हूँ तो मोबाइल ऐप के जरिए सुनता हूँ।
0: चलिए दीपक जी, तो आप ऐसे ही आकाशवाणी को सुनते रहिए। तो आइए दीपक जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।
1: जी नमस्कार भैया, धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: फ्रेंड में आपका स्वागत है। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: नमस्कार दीदी।
0: नमस्कार
1: दीदी, मैं परमेश्वर शिंदे बात कर रहा हूँ, ग्राम आनंदगांव, जिला जालना, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैं, मराठवाड़े से।
0: जी परमेश्वर जी, कैसे हैं आप?
1: दीदी हम तो अच्छे हैं, दीदी तुम कैसे हैं?
0: जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ।
1: हाँ दीदी, हम तो अभी तो खेत में हैं।
0: आप खेती करते हैं?
1: हाँ खेती करते हैं, अभी खेत में गन्ने के लिए पानी दे रहे हैं।
0: जी जी, आकाशवाणी परिवार से कब से जुड़े हुए हैं आप?
1: अभी तो आकाशवाणी से तो हम बहुत 20 साल हो गए अभी तो जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ तो अभी तो पहले तो हमारे यहाँ के नजदीक के आकाशवाणी केंद्र सुनते थे, अब मोबाइल या फिर सुविधा आ गई तो अब दूर दूर से केंद्र भी हम सुनते हैं ना। मध्य प्रदेश के रीवा केंद्र सुनते हैं, अभी छतरपुर है, ग्वालियर है।
0: जी हमें अच्छा लगा जान के कि आप आकाशवाणी परिवार से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपको आकाशवाणी छतरपुर से कौन कौन से प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: छतरपुर के कार्यक्रम तो फोन इन कार्यक्रम हम सब सुनते हैं ना। अभी देख खेती

0: जिसे भी जानकारी मिलती है ना
1: जी जी
0: वो भी सुनते हैं हम, अच्छा लगता है वो भी कार्यक्रम
1: जी। आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: दीदी आज गीत सुनना था, फिल्म का नाम है सूर्या
1: जी।
0: और गीत के बोल है प्यार काय बनाया राम ने कोई आए मेरा दिल थाम, अलका याग्निक ने गाया वाला गीत है
1: जी। फिर चलिए सुनते हैं आपकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स।
1: साथियों आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रत्येक गुरुवार को सुबह 12 बजे से 12:30 के मध्य हमें कॉल करना होगा। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 2980 29। बाहर के श्रोताओं के लिए एसटीडी कोड है 076782।
0: और साथियों कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।

0: दीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: साथियों, अंतराल के बाद पुनः स्वागत है आपका हमारे युवाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं एक और महत्वपूर्ण जानकारी सांस्कृतिक धक्का विषय पर।
3: साथियों, सांस्कृतिक धक्का वो स्थिति है जब कोई व्यक्ति नई संस्कृति, भाषा और वातावरण में जाकर असहज महसूस करता है। नई परंपराओं और जीवन शैली के कारण उसे मानसिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
2: साथियों, नई जगह की भाषा समझने में कठिनाई होती है, जिससे बातचीत करना मुश्किल हो जाता है। इससे व्यक्ति खुद को अलग महसूस करता है।
3: दोस्तों, खान पान और खाने के तरीके अलग होने के कारण शुरुआत में परेशानी होती है। धीरे धीरे व्यक्ति नई आदतों को अपनाने लगता है।
2: साथियों, रहन सहन, पहनावा और जीवन शैली में अंतर व्यक्ति को असहज बना देता है। नए वातावरण में ढलने में समय लगता है।
3: साथियों, सामाजिक नियम और शिष्टाचार अलग होने से गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। व्यक्ति को नए व्यवहार सीखने पड़ते हैं।
2: साथियों, परिवार और दोस्तों से दूर रहने पर अकेलापन महसूस होता है। इससे मानसिक तनाव और उदासी बढ़ सकती है।
3: धार्मिक परंपराएं और त्योहार नए होने के कारण आश्चर्य पैदा करते हैं। इससे नई संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है।
2: साथियों, मौसम और वातावरण में बदलाव शरीर और मन दोनों पर प्रभाव डालता है। व्यक्ति को नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है।
3: साथियों, अलग संस्कृति के नैतिक मूल्य और सोच को समझने में कठिनाई होती है। इससे व्यक्ति की सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आता है।
2: नई परिस्थितियों में आत्मविश्वास कम हो सकता है, लेकिन समय के साथ व्यक्ति मजबूत बन जाता है। अनुभव उसे नई संस्कृति के साथ तालमेल बैठाना सिखाता है।
3: दोस्तों, सांस्कृतिक धक्का जीवन का एक सामान्य अनुभव है जो नई संस्कृति को समझने और अपनाने में मदद करता है। धैर्य सीखने की इच्छा और सकारात्मक सोच से व्यक्ति आसानी से नई परिस्थितियों में खुद को ढाल सकता है।
2: साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी सांस्कृतिक धक्का विषय पर। कार्यक्रम श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आपको दे देते हैं हमारी आज की रोजगार सूचना।
3: रेलवे भर्ती बोर्ड RRB योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है।
2: पद का नाम है सहायक लोको पायलट।
3: पदों की संख्या 11,127।
2: आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। आयु सीमा में छूट नियम अनुसार दी जाएगी।
3: शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार को संबंधित ट्रेड में ITI डिप्लोमा के साथ 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
2: आवेदन की अंतिम तिथि है 14 जून 2026।
3: अधिक जानकारी के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailwaysgovernment.in पर विजिट करें। तो साथियों, ये तो थी आज की हमारी रोजगार सूचना और अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले बता देते हैं कल के कार्यक्रम।
2: साथियों, कल के कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता गर्मी में जल संरक्षण विषय पर, जिसमें वार्ताकार होंगी भूमिका चतुर्वेदी। साथ ही होंगी कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं और रोजगार सूचना।
3: तो अनुमति दीजिए अपने मित्र शुभांशु प्रजापति
2: और पारुल पटेरिया को। नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 444 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब आपको बता देते हैं आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर बाद हमारी इसी सभा में शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। इसमें आप सुनेंगे भाग 1294। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोक धारा। आज कलाकार होंगे रघुवीर सिंह यादव। शाम 7:20 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में हमारे ग्रामीण

भाई सुनेंगे आज जनोपयोगी चर्चा और बुंदेली लोकगीतों पर आधारित कंपेयर्ड कार्यक्रम सुनो गीत गुनो बतकाओ। प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की, साथ ही एक भेंट वार्ता होगी। विषय होगा सही कीटनाशक का चयन और सुरक्षित छिड़काव, किसान की पहली जिम्मेदारी विषय पर डॉक्टर अरुण कुमार सिंह से बातचीत। आज की सीख में आप सुनेंगे जोरू में जाटो खुदा से नातो, जोरू में जाटो खुदा से नातो। रात 8 बजे आकाशवाणी भोपाल से सुर्खियों में, 8:15 पर फिल्म संगीत, रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार और अंग्रेजी में समाचार, न्यूज एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से हम रिले करेंगे, रात 9:15 पर दिल्ली केंद्र से ही स्पॉट लाइट, 9:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही इनसाइट और 10 बजे आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी पसंद पर केंद्रित कार्यक्रम मन भावन। श्रोता हमें मेल करें air.chhatarpur1976@gmail.com। आपकी फरमाइशों को मन भावन कार्यक्रम में रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। जब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में, कल सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे हिंदी महक में एक वार्ता, पृथ्वी का बढ़ता तापमान और प्रभाव, वार्ताकार होंगे नंदकिशोर अहिरवार। 7:30 पर फिल्म संगीत, सुबह 8:30 पर शास्त्रीय संगीत में वायलिन वादन हम आपको सुनवाएंगे राग अहीर भैरव में पंडित बीजी जोग से। सुबह 9 बजे लोक रंग में कलाकार होंगे बालक दास। 9:30 पर फिल्मी कव्वालियां, 10:05 पर गांधी चर्चा का चौथा भाग, 10:20 पर गैर फिल्मी भजन और 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं के लिए ईमेल आईडी है air.chhatarpur1976@gmail.com, aircchhatarpur1976@gmail.com। इस पर आप मेल करें और अपनी फरमाइश के फिल्मी गाने सुन सकते हैं। 11 बजे आकाशवाणी भोपाल से सजीव फोन इन कार्यक्रम फोन करेगी सुनी भोपाल केंद्र की प्रस्तुति में। 12:30 पर संग्रहालय से आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति में। फिर में 1 बजे महिला कार्यक्रम महिला सभा आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल से। इसमें बहनें सुनेंगी माँ का जीवन में महत्व विषय पर रागुनी अग्निहोत्री से उनकी वार्ता, साथ ही बहनों के लिए उपयोगी जानकारी। 1:30 पर आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति में लोक संगीत नशा मुक्ति पर आधारित बुंदेली लोकगीत होंगे इसमें शामिल। कलाकार भगवान सिंह ठाकुर, रजनी भास्कर, मथुरा प्रसाद सुमन। प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की होगी। लोक संगीत के बाद सुगम संगीत होगा 1:45 पर, इसे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित करेंगे और दीपाली भूचक इसमें कलाकार होंगे आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति में। हमारी संध्याकालीन सभा में शाम 5:02 पर युगवाणी आप सुनेंगे आकाशवाणी छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति में। इसमें वार्ता होगी गर्मी में जल संरक्षण, वार्ताकार भूमिका चतुर्वेदी होंगी। शाम 5:30 पर फिल्म संगीत, शाम 6:30 पर लोकधारा में बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम, लोकधारा में कलाकार होंगे भास्कर साहू। शाम 7:20 पर आप सुनेंगे मानस प्रवचन, प्रवचनकर्ता होंगे राजकुमार उदेनिया और प्रसंग होगा भगवान का वरदान। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। कुछ ही पलों में न्यूज एट 9 आकाशवाणी, न्यूज हेडलाइन आकाशवाणी भोपाल से।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। निजी समय इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय

0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारों, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार किया। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। और भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामेघारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। नीचे सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: सभी श्रोताओं को मंगलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भड़ेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
1: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
0: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
1: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
1: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
0: और जी रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
1: धन्यवाद श्रोताओ आप सबका संदेश भेजने के लिए।
0: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की और जाना था इसकी रोचक बातों को
1: जी।
0: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
1: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
0: क्या नाम है भला?
1: रजनीगंधा।
0: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है बिमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है, है ना? रजनी और गंधा
1: जी। चलिए श्रोताओं इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है
0: जी। दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है
1: जी।
0: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर जैसे
1: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
0: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मैक्सिको की मानी जाती है जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है
1: जी। मूल रूप से मैक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
0: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने
0: जी।
1: बात यह है कि प्रकृति

0: ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
1: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
0: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
1: भला वो और क्या बात है?
0: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
1: जी, ये बात तो है।
0: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
1: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
0: जी,
1: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
0: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
1: अब भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतीकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियाँ महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्म्य को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है।

0: योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
1: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था।

अभी आप सुन रहे थे संगीत फिल्म का ये गीत अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर की आवाजों में। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से। लीजिए, फिल्म संगीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए बीवी हो तो ऐसी इस फिल्म का गाना हम आपको सुना रहे हैं। इस गाने में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। समीर ने इस गाने को लिखा है और संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बीवी हो तो ऐसी, इस फिल्म का गाना। और फिल्म संगीत के समापन में तुमको ना भूल पाएंगे इस फिल्म का गीत। इस गाने में गीतकार हैं जलीश शेरवानी और आवाजें हैं अवीन्द्र सिंह, स्नेहा पंत और सोनू निगम की। और संगीतकार हैं साजिद और वाजिद।

0: इसी के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या की 8:45 होने को है। समाचार संध्या आकाशवाणी दिल्ली से होंगे।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर-17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमेटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
3: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी

आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत का लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।

गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्यागपत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Countrywide.
1: सूरज जो जीवन का प्रतीक है, आज वही आग उगलता महसूस हो रहा है। धरती तप रही है, सड़कें जल रही हैं, हवाओं में ठंडक नहीं तपिश बह रही है। मई और जून की दोपहर अब सिर्फ मौसम नहीं रही, ये एक चेतावनी बन गई है। एक ऐसी चेतावनी जो हर उम्र, हर शहर और हर गांव के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी के कंट्री वाइड कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है बढ़ता तापमान, बढ़ती चुनौती, हीट वेव। पिछले कुछ वर्षों में हीट वेव ने जिस तरह से आम जनजीवन को प्रभावित किया है, उसने स्वास्थ्य, कामकाज, खेती, बच्चों और बुजुर्गों सबके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। लेकिन सवाल है, क्या हम इसके खतरों को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उन लक्षणों को समझते हैं जो शरीर हमें समय रहते संकेत के रूप में देता है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भीषण गर्मी में

0: खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखा जाए, इन्हीं अहम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं डायरेक्टर प्रोफेसर और मेडिसिन विभाग के प्रमुख लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल दिल्ली से डॉक्टर अनुपम प्रकाश। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आनंद जी, बहुत बहुत नमस्कार और सभी को नमस्कार, श्रोताओं को भी।
0: किन लोगों को हीट वेव से सबसे ज्यादा खतरा होता है, बच्चे, बुजुर्ग या बाहर काम करने वाले लोग?
1: जो ये ग्रीष्म लहर है या गर्मी की लहर है या हीट वेव जिसको आप कह रहे हैं, इस समय जैसे ही तापमान बिल्कुल चरम सीमा पर है, इस समय सभी को ध्यान रखने की बात है। कोई अपने को ये नहीं समझे कि वो बच जाएगा, तो सभी को ध्यान रखना जरूरी है। जो कोई भी दोपहर में बाहर जाते हैं उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए और दोपहर के अलावा भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि बच्चे हैं बिल्कुल खास तौर से कम उम्र के बच्चे, जो बुजुर्ग लोग हैं जितने ज्यादा अत्यधिक उम्र के लोग होंगे और जो लोग बाहर काम करते हैं खासतौर से जो हार्ड वर्क करते हैं, लेबर करते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और समझ बूझ के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग जो हैं वो इसमें अपने को समझे कि वो इम्यून हैं, उन्हें दिक्कत नहीं हो सकती है। गर्भवती महिलाएं हैं या जो भी जन लोग हैं, इवन जीव जंतु जो हैं, उनको भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कई बार होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है कि धूप बहुत ज्यादा थी, ये उसके कारण हो सकता है, कल मैंने कुछ ऐसा खा लिया, हो सकता है कि उसी की वजह से हो रहा है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। वो कौन से लक्षण हैं जिनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
1: इसमें कई बार हमें पता नहीं चलता है कि क्या परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी से जाकर के बाहर से आने में आमतौर पे सभी को जो है गर्मी लगती है, पसीना आता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो सकता है या थकान लग सकती है। लेकिन कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर अत्यधिक पसीना आए, क्योंकि शरीर की जो प्रक्रिया है वो इस तरीके से है कि जब भी आपका गर्मी होगी तो पसीना ज्यादा आता है, इससे शरीर को ठंडा मिलती है। लेकिन आपको अत्यधिक पसीना आए, वो पसीना आना बंद ही ना हो, तो इसको हमेशा ध्यान रखिए। कमजोरी लगे, उठा ना जाए, चक्कर लगे, सर में दर्द लगे, आपको बदन दर्द लगे, मांसपेशियां बिल्कुल कमजोर लगे और उठने लायक नहीं लगे आपको, अगर उल्टी जैसा लगे आपको और मांसपेशियों में कई बार दर्द होने लगता है, जैसे क्रैम्प्स होने लगता है, वो अगर ये सब चीजें आपको लगती हैं, इसके साथ अगर आप तवज्जो दें कि अगर पेशाब नहीं आ रहा है या कम आ रहा है पेशाब, ये सब लक्षण ऐसे हैं, ये शुरुआती लक्षण हैं और इनमें दिक्कत होने की संभावना बढ़ सकती है अगर तवज्जो नहीं दी जाए। तो ये बहुत जरूरी है, सबको इनको आगाह रहना चाहिए कि इन सब चीजों में से कुछ भी हो तो फौरन ध्यान रखना चाहिए और अगर आराम नहीं आता है तो परामर्श लें चिकित्सक से।
0: लक्षणों से थोड़ा आगे बढ़े डॉक्टर साहब, कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा है या फिर बुखार की समस्या है, या कई बार ऐसा होता है कि गर्मी में बहुत सारे जो हमारे कामकाजी लोग हैं वो बाइक से डिलीवरी करने जाते हैं या बाइक से ऑफिस जाते हैं, ऐसा लगता है कि चक्कर सा आ गया, आंखों के सामने धुंधला सा आ गया, वो ऐसे समय में क्या करें? क्या ये वार्निंग साइन है डॉक्टर के पास जाने का, या घर पर आराम करके राहत मिल सकती है?
1: अगर आराम नहीं आए तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है। लेकिन हाँ, अगर आपको शुरुआती लक्षण लगते हैं, सर में दर्द लगता है, थकान लगते हैं, तो पहली चीज तो यह है कि जब तक मजबूरी ना हो तब तक बाहर ना निकलें। लेकिन अगर मजबूरी ही है तो फिर आपको अगर जाना है और आपको ये लक्षण लगते हैं कि सर दर्द हो रहा है, घबराहट हो रही है, उल्टी आ रही है या मांसपेशियों में ऐंठन हो रहा है, चक्कर लग रहा है, तो इन सब चीजों में फौरन आप अपना अगर जा भी रहे हैं कहीं तो वो स्थगित कर दें या रुक जाएं और ठंडी जगह पे जाएं या किसी पेड़ की छांव में रहें और पानी ज्यादा लें। अगर आप संभव हो तो नमक डाल करके, थोड़ा नींबू डाल करके जो है शिकंजी टाइप बना करके आप लें, या ORS का घोल तो हर जगह मिल जाता है, तो ORS का घोल बना करके पानी लें। इसमें नमक लेना जरूरी होता है, क्योंकि नमक जो है, अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो नमक जरूर लें, क्योंकि पसीने में नमक भी काफी लूज कर जाते हैं। आराम करें और जब तक बिल्कुल ठीक ना लगे तब तक ना जाएं। अगर तापमान, जैसा आपने कहा, बुखार हो गया है, बढ़ रहा है, तो ठंडी पट्टी भी रखनी पड़ेगी, और अगर बुखार में राहत नहीं मिलता है तो फिर डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है।
0: इसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि गर्मी के मौसम में जब तापमान दिल्ली में तकरीबन 43 डिग्री सेल्सियस है, और जो श्रोता देश के अलग अलग हिस्सों से हमें सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं आकाशवाणी के माध्यम से, वहां भी तापमान कमोबेश 40 से ऊपर है, ऐसे में खाने पीने की आदतों में क्या बदलाव करना जरूरी है?
1: ये बहुत जरूरी है कि हम अपने रहन सहन और खान पान पर ध्यान दें।

0: साल भर ही देना जरूरी है, गर्मी के मौसम में और जरूरी है। इसमें जब प्यास लगे तब पानी पीने की जगह हर थोड़ी देर पे पानी पीना ही चाहिए, जिससे कि पानी की कमी ना हो। और सिर्फ पानी नहीं, हल्का सा जैसे मैंने बताया नमक डाल करके, या छाछ है, नमकीन छाछ है या दही है, ये चीजें लें। फल लें, आजकल गर्मियों में बड़े अच्छे फल आते हैं, और जूस वाले फल आते हैं जिनमें रसीले फल होते हैं, जिनमें आपको पानी की मात्रा ज्यादा मिल जाती है, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, खीरा, ककड़ी, ये सब चीजें आप लें, जिससे कि आपको फायदा रहे, पानी की कमी ना हो और तत्व भी मिले।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत सारे श्रोताओं के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि जैसे ही गर्मी आती है, चाहे बच्चे हों या युवा हों, वो कोल्ड ड्रिंक की तरफ बहुत ज्यादा जाते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीने को बहुत आतुर होते हैं। क्या ये शरीर के लिहाज से स्वास्थ्य, बेहतर स्वास्थ्य के लिहाज से सही है?
0: देखिए, जो कोल्ड ड्रिंक्स है या कैफिनेटेड बीवरेजेस जिन्हें हम कहते हैं, या चाय, कॉफी, ये सब चीजें नहीं लेनी चाहिए। इसमें ऐसे ही मदिरा, ये सब चीजें नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें पानी होता है, लेकिन इन सब चीजों से पेशाब आने की मात्रा बढ़ जाती है। तो अगर पेशाब ज्यादा होगा तो आप पानी ले भी रहे हैं तो वो उसमें निकल जाता है, तो इसलिए उससे आपके शरीर को पानी की आपूर्ति नहीं होती है। तो ऐसी चीजें लेने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे ही जो बहुत ज्यादा मीठे पदार्थ हैं, कई लोग फ्रूट जूस लेते हैं, तो वो लेने भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके उससे भी कई बार जिनको शुगर की टेंडेंसी होती है, शुगर होती है, उनके लिए वो फायदेमंद नहीं होते हैं। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब चीजें थोड़ी अवॉइड करनी पड़ेगी। ठंडा जो पानी आप कह रहे हैं, ठंडा पानी लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आदमी बाहर से आता है बिल्कुल गर्मी से और एकदम से ठंडे पानी का सेवन करता है, तो कई बार जो है तापमान के बदलने से जुकाम, खांसी, नजला या वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो बाहर से आए तो 2-3 मिनट वेट करके, 4-5 मिनट वेट करके, उसके बाद जब आपका तापमान बाहर 45 डिग्री से घर के तापमान 30-35 डिग्री के आसपास आ जाए, तो फिर आप थोड़ा ठंडा पानी लेने की सोच सकते हैं।
1: एक और व्यवहारिक सवाल डॉक्टर साहब, बहुत सारे स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं देश भर में, और बच्चे छुट्टियां मनाने या तो नानी घर चले जाते हैं या अपने गांव चले जाते हैं, वहां उन बच्चों के साथ जो खेलते हैं उनके नाना नानी, दादा दादी, तो सवाल यह है कि बच्चों और बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: देखिए, ये बहुत ही जरूरी है, बच्चे और बुजुर्गों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जो लोग बाहर, मतलब यंग लोग भी हैं, मिडिल एज भी हैं, डेढ़ उम्र के लोग भी हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती महिलाएं हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान रखें कि धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलें। जो पीक आवर्स होते हैं, जो कहते हैं 12 से 3 या 12 से 4 का है, उस समय जो है आप बिल्कुल भी धूप से बाहर नहीं निकले घर से, क्योंकि अगर धूप में नहीं भी जा रहे हैं तो भी बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होता है, और गर्म हवा से ही आपकी जो त्वचा है उसमें से वेपोरेशन, काफी पानी निकल जाता है। दूसरी चीज है, अगर खेलना है या पार्क जाना है, मैं बिल्कुल मानता हूँ ग्रीष्मकालीन के अवकाश में हम लोग भी यही सोचते थे कि जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग, मतलब कि प्रातः सवेरे जल्दी जाएं, सूरज जब तक धीमा है तो 6-7, 7:30 बजे तक आप घूम करके आए, या शाम को भी 6-7 बजे के बाद आप जाए। धूप रहते, मतलब रोशनी रहती है शाम को भी 7 बजे तक, तो आप 6 बजे के बाद आप निकलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जाए तो साथ में पानी जरूर रखें और कुछ कपड़ा वगैरह लेकर के जाए। अगर धूप है उस समय तो छतरी का ले, जिससे कि आप डायरेक्ट सनशाइन से कम सूरज की रोशनी से बच सके।
1: बहुत सारे लोग घरों में हैं जिनको या तो हाइपरटेंशन की समस्या है, या फिर वो डायबिटीज के पेशेंट हैं, या फिर वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जिन्हें हर 10 दिन 15 दिन के पास डॉक्टर्स के पास जाना होता है। हीट वेव और बढ़ते तापमान के बीच कई बार उनके मन में ये सोच आती है कि गर्मी बहुत ज्यादा है, इस बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, अगली बार जाएंगे वही दवाई कंटिन्यू कर लेते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश होगा आपका?
0: देखिए, ब्लड प्रेशर, शुगर, क्रॉनिक किडनी डिजीज, जैसे आप बता रहे हैं, गुर्दा रोग के जो मरीज हैं, इनको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये पानी का जो है बहुत ज्यादा सेवन नहीं कर सकते हैं, और अगर सेवन करते हैं तो इन्हें पता होना चाहिए कि इन्हें दिल की बीमारी नहीं है या किडनी की रोग नहीं है, तो ब्लड प्रेशर के और शुगर के रोग ले सकते हैं, लेकिन इनको भी वही है, पानी लेंगे तो मीठा नहीं लेना है और नमक डाल के नहीं लेना है, तो इसलिए इनको तो ज्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने शरीर का। और जो निश्चित नियमित रूप से जो अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ, तो उसको थोड़ा या तो अप्रैल से पहले रखें, और फिर मई में एक बार जाना पड़ेगा, तो जैसे मैंने कहा कि सवेरे जाएं या शाम को लें अपॉइंटमेंट, और जाकर के एक बार दिखा के जरूर आएं, क्योंकि कई बार जो है दवाएं भी इनकी थोड़ी बदलनी पड़ती हैं, खासतौर से जो गुर्दे के रोगी हैं उनमें भी और ब्लड प्रेशर के रोगियों में भी।

0: दवा का ऊपर नीचे करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पसीना आ रहा है, सोडियम लूज कर रहे हैं आप पसीने के साथ, तो पानी और सोडियम को देखने के लिए आपकी कई दवाएं होती हैं ब्लड प्रेशर के रोगियों में और गुर्दे के मरीजों में, और डायबिटीज में भी आजकल ऐसी दवाएं यूज हो रही हैं। तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना जरूरी है, लेकिन गर्मी में ना जाए। और बीच बीच में कई दिन ऐसे आते हैं जब बारिश हो जाती है भारतवर्ष में, तो उन दिनों नहीं तो अपॉइंटमेंट लेकर के जा करके डॉक्टर को जरूर दिखा करके आए।
1: डॉक्टर साहब, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल तो ये है कि ऐसे मौसम में वो कौन सी लापरवाहियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए?
0: देखिए, धूप में बिल्कुल भी ना जाएं जहां तक संभव हो। दूसरी चीज, पानी जरूर साथ में लेकर के जाएं, और अगर धूप में जा रहे हैं तो आप जरूर छाता लेकर के जाएं या गमछा या कपड़ा लेकर के जाएं, जिससे कि आप अपने शरीर को ढक सकें। ये बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमें दिक्कत नहीं होगी, बस 5 मिनट में होकर के आते हैं। वो कब समय बढ़ जाता है या कब बहुत ज्यादा तेज धूप होती है और हमारा शरीर उसमें जो लपेट में आ रहता है गर्मी की या लू की लपेट में, वो हम नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है।
1: और ओवरऑल आप क्या हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन की समस्या हो रही है, गर्मी काफी ज्यादा बढ़ रही है और महानगरों में एसी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिससे भी तापमान में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप आकाशवाणी के श्रोताओं को बढ़ते तापमान और हीट वेव के बीच क्या संदेश देंगे?
0: मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि जितना भी हो सके, जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो विश्व स्तर में जो गर्मी हो रही है, तो उसके लिए जो आपको जरूरी है वो ये है कि हरियाली ज्यादा रखें। तो पेड़ ऐसे बोएं और पेड़ों को काटें नहीं जो कि पेड़ आपको छाया देते हैं। तो छायादार वृक्षों का आप जरूर लगाएं, पार्क में या जहां भी जगह मिले उसको आप लगाएं। दूसरी चीज है कि कभी भी हम कहीं जाते हैं, चाहे पहाड़ों पे या कहीं और भी, तो वहां पे भी अपना जो पर्यावरण से बचाव है या उसको बचाव करने की हमारी क्षमता है, उसको हम ध्यान रखें। घरों में भी हम लोग, जैसे आपने कहा, एसी यूज करते हैं, तो आप उसका तापमान जो है उस हिसाब से रखिए जिसमें कि बहुत ज्यादा बिजली या ऊर्जा नहीं इस्तेमाल हो, और बिजली भी जहां इस्तेमाल नहीं हो रही है वहां बंद करके रखें। ये सब कुछ चीजें हैं जो बहुत ध्यान देने योग्य है। पानी का भी हमें बचाव करना जरूरी है। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसा आपने कहा आनंद जी, ये हमें बहुत जरूरी है कि हमारे श्रोताओं इनको ध्यान दें। अगर हम पानी का बचाव कर सकते हैं, कहीं बह रहा है तो उसको रोक सकते हैं, तो इससे पर्यावरण को मदद मिलेगी।
1: जी हाँ, छोटे छोटे बदलावों से ही हम एक समग्र परिवर्तन कर सकते हैं। गर्मी सिर्फ मौसम का बदलना नहीं रह गया, ये समय है सतर्क रहने का, अपने शरीर की आवाज सुनने का और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। हीट वेव हमें यही सिखाती है कि छोटी सी सावधानी भी बड़ी सुरक्षा बन सकती है। समय पर पानी पीना, धूप से बचना, लक्षणों को नजरअंदाज न करना और जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना, ये छोटी छोटी बातें किसी की जिंदगी बचा सकती हैं। डॉक्टर अनुपम प्रकाश, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए हमारे श्रोताओं के साथ आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
1: उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इस बढ़ती गर्मी के बीच खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रह पाएंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide. Insights. This is Akashwani. In the program Insights, now we bring you a discussion on Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. The participants are Abhijit Deb, senior journalist, and Ramya, anchor.
3: Good evening, listeners. Welcome to the weekly program Insights. Today, we will be discussing about the Uniform Civil Code in Assam towards equal rights for all citizens. To shed more light on this, we have with us senior journalist from Assam, Abhijit Deb. Welcome to the program.
4: Thank you.
3: Before we begin the program, let's listen to what Chief Minister Hemant Biswa Sarma said after the passing of the bill.
5: Assam Assembly has adopted Uniform Civil Code 2026. Assam will be the third state after Uttarakhand and Gujarat to adopt Uniform Civil Code. Adoption of Uniform Civil Code was one of our commitments in our election manifesto. We are very happy and delighted that in the first session of

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए श्रोताओं, अब आपके ईमेल और आपके खतों पर आधारित कार्यक्रम मन भावन को हम लेकर हाजिर हो गए हैं। आप सभी को आपके दोस्त राजेंद्र अहिरवार का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज ईद का पर्व है, हम सभी सांप्रदायिक सौहार्द का ये पर्व मना रहे हैं और ये गाना हम आपको जुड़ा हुआ सुनवाते हैं। ये गाना है दिल परदेसी हो गया। इस फिल्म से सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजें हैं, गीतकार सावन कुमार और संगीतकार उषा खन्ना। मेल आप सभी के हमें प्राप्त हो रहे हैं, आप सभी हमें ईमेल कर सकते हैं eirchhatarpur1976@gmail.com। इस मेल आईडी पर eirchhatarpur1976@gmail.com इस मेल आईडी पर। और ये पहला मेल हमें प्राप्त हुआ है ग्राम लोहिड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र अरविंद राग

रिया, दिव्यांशी और रेणु यादव का। इसी गीत में एक और मेल है, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरबाल, कमला रानी भानु प्रकाश और गीतिका खोरबाल का एक और मेल मिला हुआ है। फाजिल्का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल खेड़ा, विशु खेड़ा, लाड़ी और शालिनी दिवांशी खेड़ा। इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र हैं, मंजिल छोटी बलिया से लिखते हैं नूर, आयशा और अहमद, इकबाल, अखलाक, आमना, राबिया और इनके परिवार वाले। और इसी गीत में छतरी तोल तेघला बाजार बेगूसराय से अदीबा अफसरी, इस्माइल आजाद, नन्हे राजा, फैयाज और वली आलम। इसी गीत में गांव नथाना पंजाब से जुड़े हैं हरजिंदर शिंदा, जसबीर जस्सी, सीता और गीता। और आप हैं लिख भेजा है दादा बाबू रोड गिरडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और बेबी चाहत। और इसी गीत में ये मेल है, लिख भेजा है शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, साथ में मोहम्मद कैफ है, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताड़े, वसंतराव भोज ने, पीएस नुहाकर। और इसी गीत में मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और इनके साथ शुभ चंद्र जी। इसी गीत में एक और मेल है आकोट से विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, संजीव डोबिरा। और इसी गीत में मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से पीएस नुहाकर और इनके परिवार वाले अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहाकर, निर्मला विशाल नुहाकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान आशीष मुडरेकर अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे मित्र हैं निमेश श्रोता, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, विमला अनेजा और शेफाली अनेजा। और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ हैं, देख भेजा है नवान शहर टोनूवाल पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका थांदी, प्रियांश, प्रियम, वामिका और वाणी थांदी अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। इसी गीत में ये मित्र हमें अपनी फरमाइश लिखते हैं, लिख भेजा है ये मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है हमारे मित्र हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। ये मेल है नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनाल सिंह, अविराज सिंह, गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह। एक और मेल है, लिख भेजा है हुसैन प्रिंस, बेगम इशरत, रुबीना आरिज, नदीम, शमीम, ममता रानी, पूनम कुमारी, कलीर बिहार से अपनी फरमाइश हमें लिख भेजे हैं, सीतामढ़ी महसौल से अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, ये मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है मेल अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरबाल, गीतिका खोरबाल और भानु प्रकाश। और ये मेल हमें मिला हुआ है कैथल हरियाणा से जयवीन सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा और इनके परिवार वाले। और इसी गीत को पसंद किया संदीप मक्कड़ और इनके परिवार वालों ने। इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मीहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा अपनी फरमाइश के साथ। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें मेल लिखते हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सिंह। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी जुड़े हुए हैं। आप हैं दीपक नामदेव, कैलाश नारायण नामदेव, द्रौपदी नामदेव, रामदेवी, ब्रजेश कुमारी, अखिलेश कुमारी, लखनलाल चाहना, आकाश रानीपारी, सूरबी और इनके परिवार वाले। लिख भेजा है ग्रामा पोस्ट गोना कुशमार थाना सोजना तहसील महरौनी जिला ललितपुर से अपनी फरमाइश के साथ हमें ये मित्र हैं गांव हांडी खेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। एक और मेल है पटेल नगर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया। और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने अपनी फरमाइश के साथ ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक आराध्या चंसोलिया। और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं हमारे ये मित्र हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। एक और मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूलवाले, दुखनी सफद आरजू, जूही इकबाल फूलवाले, इमरान अहमद फूलवाले, कापस हिड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन,
परी, आसमा, राबिया, मंतशा, आशु और समस्त परिवार वाले इस गीत में अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। ग्राम बीलपुर, जिला हमीरपुर, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से साधु बाबा वीरेंद्र सिंह तोमर, संजय दीपक और सोनू तोमर हमें अपनी फरमाइश के साथ ये मित्र भी जुड़ चुके।

चुके हैं। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और नोखिलार वर्मा भी जुड़ चुके हैं। इसी गीत में ग्राम्बा पोस्ट विरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल, हिमांशु, यगिता, निवेदिता, ज्योति, सुशीला, मधुपाल और मानसी पाल भी जुड़े हुए हैं। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती कंचन, कुसुम, प्राची और प्रवीण पुजारी अपनी फरमाइश भेजते हैं। और इसी गीत में लिख भेजा है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला विशाल, निशा राठौड़ और ये मेल है बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंशु नारंग, मोहित, तानिया नारंग और अपनी फरमाइश के साथ अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर, श्रीमती वंदना गौहर और इनके परिवार वाले। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल्लू डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो और तीतरा खलीलपुर जिला जालौन से अंजलि सिंह जाटो, आकांक्षा जाटो, ऋषि जाटो, सोहम सिंह परिहार और शालू सिंह परिहार भी जुड़ चुके हैं। और इसी गीत में एसएम जावेद, शगुप्ता, अंजुम और नजमुल होदा गुमला झारखंड से अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। इसी गीत में एमएलबी रोड ग्वालियर से हमारे श्रोता हैं सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव खुराना और एस के पप्पी। इसी गीत को पसंद किया जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। इसी गीत में दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा अपनी फरमाइश हमें भेजती है चौटाला हरियाणा से। और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र हैं बिडूरा से लोकेन्द्र सिंह गुर्जर, महिपाल सिंह गुर्जर, यशपाल सिंह, जयपाल और इनके परिवार वाले। और इसी गीत में किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी दास और इनके साथी। इसी गीत को गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और इनके परिवार वाले। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रियान, समरीन परवीन, माहिरा नूर अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। और ये मेल है डोंडी लुहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया और राधिका तामुरिया। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। परमणि महाराज से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रतीश और इनके परिवार वाले। इसी गीत में ये मेल हमें मिला हुआ है अपनी फरमाइश के साथ हम तक लिख भेजा है हमारे ये मित्र हैं, लिख भेजते हैं महसौल सीतामढ़ी बिहार से शाहीन और नाजिया नूरी अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजिए। हमारे ये मित्र हैं बसारी दरवाजा छतरपुर से राकेश वर्मा और कपूर सिंह घोष और इनके परिवार वाले। दुल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्म, मोनी, बलबीर सिंह विरक और इनके परिवार वाले। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो भी जुड़े हुए हैं। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। इसी गीत को पसंद किया तालगांव भांडे दतिया से मेहरबान सिंह नागल, प्रताप सिंह नागल, छोटू नागल, गुड़िया नागल और संतोष कुमार नागल। इसी गीत में कृष्णा घोट के प्रशांत शिंदे, रूषि शिंदे और यशराज शिंदे, सुनीता अपनी फरमाइश के साथ लिख भेजा है। ये हैं पंढरपुर सिटी से अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी गीत में ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति। और एक और मेल है कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम, राजवाड़ी और इसी गीत में अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, प्रियल वंदना, दिव्यांशी विश्वकर्मा, ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। और इसी गीत को पसंद करते नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। सोनू रवि राज गुलशन लक्की जालंधर सिटी पंजाब से। और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र राज पैलेस मऊनाथ भंजन यूपी से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ यूपी से, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा, पीयू स्वर्णकार और आप अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारे मित्र हैं शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आली अंसारी अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। इसी गीत को पसंद करते हैं गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या, करिश्मा कामले। श्रोताओं आप भी आकाशवाणी छतरपुर से मन भावन कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हमें मेल करें diirchhatarpur1976@gmail.com इस मेल आईडी पर। एक और मेल मिला हुआ है हमारे श्रोता है अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल है मृतला महोबा उत्तर प्रदेश से, नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न सिंह, गौरव सिंह, जानवी राजपूत और गुरु महाराज दादी राजपूत भी जुड़े हुए हैं। और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख

भेजी है, ये मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है रूबी नामदेव, अभय नामदेव, रामा नामदेव ने लिख भेजा है, गोना कुशमार और ललितपुर से अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है और इसे गीत को पसंद करते हैं। ये हमारे मित्र अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी और पेंटर बाबू अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुलवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष

सपना शिवी और पेंटर बाबू अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुलवंत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष विवेक, आयुषी और गुणवंत श्रीवास से। कूर्बी बेलित्रा छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित, सोनू, मानस राज इस गीत को पसंद करते हैं। हमारे ये मित्र लिख भेजते हैं। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इनके फरमाइश परिवार वाले। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। एक और मेल हमें मिला हुआ है मुताला महाराज से, विजय सुरलकर रतनमाला ओम कुमार का। अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजिए। हमारे ये मित्र हैं गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोंधली, आरती जोंधली और इनके परिवार वाले। इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा और इनके परिवार वाले हमें लिख भेजते हैं। कस्बा गुन्नौर यूपी ऊपरकोट बुलंद शहर से साथ में एमएस अब्बासी और अब्बासी परिवार के साथ ही, और इसी गीत को अपनी फरमाइश के साथ हम तक भेजते हैं। राम चबूतरा कालपी से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमर निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, मेल हम तक लिख भेजा है। ये मेल हमें प्राप्त हुआ है, लिखने वाले हमारे श्रोता हैं बबलू प्रसाद साहू, आदर्श कुमार साहू, पारसमणि साहू, अभिषेक साहू, बेलू साहू और इनके परिवार वाले, ग्राम बहिरी तहसील नरेनी जनपद बांदा से। आप सबको आपकी फरमाइश पर हम सुनवा रहे हैं ये गीत।

श्रोताओ, आप सभी अपनी अपनी फरमाइशें हम तक मेल के माध्यम से भेजते रहें AIR छतरपुर 1976@gmail.com इस मेल आईडी पर। कार्यक्रम मन भावन।

श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा। आप सभी ईमेल करते रहें AIR76@gmail.com इस मेल आईडी पर अपने मनपसंद कार्यक्रम मन भावन में। हम रुकते हैं एक संदेश के लिए।

कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर छुपा रुस्तम फिल्म का गीत है। अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, संगीतकार आनंद मिलिंद। श्रोताओं, मेल आप सभी के हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये मेल हमें मिला हुआ है गांव हीरावाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, और इस गीत में कुछ खत भी हमें आप सभी के मिले हुए हैं। ये खत मिला हुआ है, लिख भेजा है ग्राम मृतला मोहब्बत से राम जीवन राजपूत, राम मिलन भूरा सूर्या से ऋषिकांत राजपूत का, और बठेना से बलकरण अंजनी वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा का। और इसी गीत में ये मेल मिला हुआ है मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और इनके परिवार वालों का। इसी गीत में उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरबाल, कमला रानी भान प्रकाश, गीतपा होरबाल। ये मेल है ग्राम परसीठा जिला फतेहपुर यूपी से रोहित यादव, बेटा यादव, पंकज यादव, अंगद यादव, आयुष, आर्यन, आदर्श और हार्दिक यादव अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। चटोदा सारा गांव से सुजान वर्मा, साहुद्रा वर्मा, आयुषीकृत वर्मा। एक और पत्र है छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, की आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम मिस्त्री, और इसी गीत को पसंद किया है गांव अलगुडांड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से रोहित यादव, विपिन यादव, आयुष, अतुल, श्रीमती फूलजी यादव और समस्त परिवार के साथ ही। इसी गीत में पसंद अपनी लिख भेजी है पीपरपारा पालचुआ मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता, नितिन, वंशिका दिवाकर, और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने।

ये मेल है स्वर्ण सिंह गिल, जलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, पोत्री गुरमीर सिंह, शुभदीप सिंह की गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला जिला फिरोजपुर पंजाब से अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल है गुरियाना पोस्ट पटना थाना नाराहट जिला ललितपुर से सीताराम नामदेव सिद्धार्थ, और ये मेल है ग्राम बचरे जिला ललितपुर से दिलीप कुमार नामदेव, और इसी गीत को पसंद किया मेल के माध्यम से ग्राम सिद्धवाहा जिला ललितपुर से नरेंद्र नामदेव, पप्पू नामदेव और इनके परिवार वाले। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है उदयपुर राजस्थान से बबलू भाई, भारती देवी, रमेश नाचानी और भारती नाचानी ने। ये पत्र हम तक मिला हुआ था शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंशुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव का। इसी गीत में पत्र मिला हुआ है हमारे इन श्रोताओं का प्रभाकर जोंगली, आरती जोंगली, गौतम नगर जिला नांदेड़ से अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है और चांदुर बिस्वा से लिख भेजा है ललिता नारायण खरसे और स्वाति प्रयाग चौधरी ने, और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने बीरडी से हुकुम करमरकर, सुनीता हार्दिक, तनु करमरकर, और ये पत्र है चांदुर बिस्वा तालुका नांदुरा जिला महाराष्ट्र से हमें लिख भेजा है बुलढाणा जिला महाराष्ट्र से मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी और इनके परिवार वालों ने। इसी गीत में झूलेलाल चौल चौक तिलदा से हरीश कुमार, सीतपाल, सुशीला और इनके परिवार वाले, और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है मोटक्का माफी जिला खंडवा से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ललित, शिवम, देवी कृष्ण, भावना, मानस और मन, कनकराज पटेल की, इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश कौन, कटघोरा छत्तीसगढ़ से चंद्रपाल सिंह, शकुंतला, मनोजपाल सिंह, लखनपाल सिंह, दिनेशपाल सिंह, कविता सिंह, बेमित्रा, नयापारा से ईश्वर प्रसाद साहू, वंदना साहू, भावना, नीलेश कुमार, श्रद्धा साहू अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता, आदर्श नगर मलूर पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, सौरभ शर्मा, नांदखीड़ जिला वाशिम से अशोक चुमली, दिनेश चुमली, रूपेश लीलाबाई, चैताली और प्रीति चांदली, और इसी गीत में सेक्टर 8 भिलाई सिटी स्टील सिटी से हमें अशोक, श्याम कुमार, प्रमला, दीपक, श्वेति, ज्योति अपनी फरमाइश लिख भेजते हैं। कोका भिलाई छत्तीसगढ़ से प्रताप पांडे, रेखा पांडे, लोकेश पांडे, भाग्यश्री पांडे और शौर्य पांडे। इसी गीत में भोर सुदास से भगवती, संतोष, ज्योति, गजेंद्र, चंद्र प्रकाश और इनके परिवार वाले, और इसी गीत में ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर, राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। और इसी गीत में ये मेल हमें मिला हुआ है ग्राम गरोली जतारा टीकमगढ़ से चतुर्भुज जहरवार, विनोद, रानू, ब्रजेश और सुषमा का, और इसी गीत में कुछ और मेल हमें प्राप्त हो रहे हैं, कुछ लगातार हमें रिपीट भी मेल हो रहे हैं। एक और मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है भागवत देठे पाटिल, लक्ष्मी देठे पाटिल, समर्थ दादा देठे पाटिल, कुमारी सानिका देठे पाटिल, बर्फ गांव नांदुरा से शिवाजी उगले और राहुल उगले, और इसी गीत में ये अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। अनुज नगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से चंद्रभान राजवाड़ी, बबीता राजवाड़ी, धिया राजवाड़ी, काव्य राजवाड़ी और मंजू राजवाड़ी, इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। ये मेल के माध्यम से लिखते हैं जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरित, रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र कुमार, किशन कुमार, सुनीता देवी, ऋषिवन लाल, चंद्रहांस, हीरेन्द्र कुमार साहू, त्रिलोक कुमार मास्टर, रणजीत सिंह साहू अपनी फरमाइश के साथ हम तक लिख भेजा है। ग्राम महसवाड़ी तहसील कपूर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी स्वप्निल धाड़े। एक और मेल हमें मिला हुआ है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। ये पोटिया कला दुर्ग के श्रोता हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू अपनी फरमाइश के साथ हम तक। दत्तरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नौखेलाल वर्मा, और इसी गीत को पसंद किया है। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महुबिया, कविता महुबिया, विशाल विवेक, सोनू मोनू, रानू, ईशु बाबा और पेंटर बाबू अपनी फरमाइश के साथ इसी गीत को पसंद करते हैं। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर यूपी से मोहम्मद बक्कार फरीदी, इकबाल से तारा नसरीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजरा रानी और हिना कौसर अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं, और इसी गीत को पसंद किया है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी, जस्सी, सीता और गीता, और इसी गीत को पसंद किया है। ये मेल हम तक लिख भेजी है
अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर से तन्वी गौहर ने, और इसी गीत को पसंद किया है हमारे श्रोताओं ने। छत्तीसगढ़ डोंगरगांव से राजपाल गजबी, राधिका गजबी, बेबी निष्का।

तन्मय गजबी और इसी गीत में मीरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव, संदीप मक्कर, अनिल जैन और इनके परिवार वाले भी लिख भेजते हैं अपनी फरमाइश और इसी गीत को पसंद किया है। ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा और इसी गीत में रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा भी जुड़ चुकी हैं। मेन बाजार कुलरवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर अपनी फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं और इसी गीत में शाहू नगर यवतमाल विदर्भ से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और मनवर परिवार के साथ ही पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरवन शाह और अश्विनी शाह, मंगलाबीन और राजेंद्र जी शाह भी जुड़े हुए हैं। कुछ खत भी हम शामिल कर रहे हैं। खत हमें प्राप्त हुआ है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटुल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और इसी गीत में गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, मीका, बलविंदर, विरक, जैतिक विगर, मीका विरक अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। ये पत्र है लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। ये पत्र है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जीएस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के साथी और इसी गीत में नेपाल पहले सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका और रॉबिन अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं और इसी गीत में दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर और इनके मम्मी पापा ग्राम खक्कल तहसील कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अपनी फरमाइश लिख भेजते हैं। दतरेंगी से भागवत वर्मा और लिबई से गुलाबदास मानिकपुरी और इसी गीत को पसंद किया है। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, मावली सिंगारपुर से सालिक पुजारी अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामनी वर्मा, सुरेश कुमार सारथी, भाई कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी, बीमित रा छत्तीसगढ़ से जुड़ चुके हैं अपने खत के माध्यम से और इसी गीत में कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया निवादा गाजीपुर के श्रोता है, प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शीरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय और अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। ये पत्र हम तक लिखा हुआ हमारे इन श्रोताओं ने, इन्हें भी हम शामिल करते हैं। ये पत्र है अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तानी, सूरज, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। कुछ मेल हमें प्राप्त हो रहे हैं, देखते हैं कौन कौन मेल हमें अभी अभी मिल चुके हैं। ये मेल हमारे मित्र ने हम तक लिख भेजा है सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्लाह, सबाहत, किरण हुजरे और रिहान शेख अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं और इसी गीत में ये भी लिखते हैं कि हमें भी ये गाना सुनवा दें। बिल्कुल हम आपको सुनवा देंगे आपके मैसेज में। और ये मेल है मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीम, पलक लुबना और यश मंसूरी। श्रोताओं, जिन जिन श्रोताओं के मेल शामिल होते जा रहे हैं वे कृपया आप मेल ना करें क्योंकि और श्रोताओं को हम मौका दें और लगातार आपके एक ही मेल आईडी से कई मेल आ रहे हैं और लोगों को भी जुड़ने दें। बीडी से हमें लिख भेजते हैं कुमकर मरकर और तनुकर मरकर। इसी गीत में कुछ और मेल हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये मेल है लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू तेलीवाला धनोरी से अपनी फरमाइश के साथ जुड़ चुके हैं। आइए हम आप सबको सुनवा रहे हैं छुपा रुस्तम, इस फिल्म का ये गाना। श्रोताओ, गाने के साथ अपने अपनी पसंद के मेल करें आपके पसंदीदा कार्यक्रम मन भवन में AIR छतरपुर 1976@gmail.com इस मेल आईडी पर।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम जारी रहेगा, रुकते हैं एक अंतराल के लिए।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र से आप सुन रहे हैं मन भवन। आप सभी ईमेल करके अपनी फरमाइश सुन सकते हैं इस कार्यक्रम में। हमारा ईमेल एड्रेस AIR 1976@gmail.com। जी है, आप हमें अपनी फरमाइश भेजें, अपनी पसंद के गाने सुने और ये गाना हम आप सबको सुना रहे हैं आप सबकी फरमाइश पर, मुझसे शादी करोगी। इस फिल्म का गाना अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज, गीतकार हैं जलीश शेरवानी और संगीतकार साजिद वाजिद। पसंद आप सभी की हम

मिली हुई हैं, अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। अस्तपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, राजा बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। इसी गीत को पसंद किया है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोंड ने, और इसी गीत में ये अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। चौटाला हरियाणा से धारा पंडित संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने, और इसी गीत को पसंद किया है। ईद मुबारक के साथ अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया और दिशानी, और इसी गीत को पसंद किया है। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, डाबकी रोड अकोला से, और इसी गीत को पसंद करते हैं। हमें अपनी फरमाइश के साथ लोहेगढ़ ठाकुरवाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल और इनके परिवार वाले, और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। हमारे ये श्रोता खत के माध्यम से भी अपनी पसंद हम तक भेजते हैं। हर्षिता रामेश्वर कान्हा, सफलता कपिल, मीनाक्षी सत्यनारायण और मनोहर भाई प्रभुलाल बागरी अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण साहू, चंपा साहू अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और ये जो फरमाइश हम तक मिली हर्षिता रामेश्वर जी की, लाल माता सुदामनगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से मिली हुई है, और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से अनु गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी का, और इसी गीत में नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जमुना देवी साहू, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजती हैं, और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र। और ये फरमाइश हम तक लिख भेजा है मलियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन जैन और संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। ये मेल है बन्नी बुजुर्ग पलेरा जिला टीकमगढ़ से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल हम तक लिख भेजा है, लिख भेजी अपनी पसंद हम तक लिख भेजी है। हाँ, ये मेल हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है गांव खरकड़ा चौबीसी से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, आशिक तमन्ना कांगड़ा, अंशिका बोट अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं, और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। लिख भेजा है दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रांजल राय और रोशनी राय ने, इसी गीत को अपनी फरमाइश के साथ हम तक लिख भेजती हैं। ग्रामा पोस्ट हाँ अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट, ग्राम पनवाड़ी जिला महोबा उत्तर प्रदेश से देवीदी नेहरवार, सुनीता, दिनेश कुमार, कपिल, पूजा अहिरवार, और इस गीत में धाम मोहल्ला पन्ना मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं कौशल किशोर मट्टू, संगीता हर्षित एवं वैभव मट्टू, और गायत्री मोहल पनवाड़ी जिला महोबा से आप अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और ये हमारे मित्र हैं शिव नारायण पांचाल, देव नारायण, लक्ष्मी प्रसाद, प्रीति, नीतू, विनय, नेहा, सत्यम, मोहिनी, अनुज गुड्डी, अंकुश पांचाल, और इसी गीत में ये अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हैं। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखिलाल वर्मा भी जुड़े चुके हैं, और इसी गीत में उदयभान पाल और साथ में जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, बिमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और इनके परिवार के साथ ही ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। सनावत से शेख मूसा मोहसिन और इनके परिवार वाले, और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजिए। आम्बेडकर चौक बाकोड़ी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज जमदाड़े, और कुछ खत भी हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये खत हम तक लिख भेजा है हमारे इन श्रोताओं ने। मालवा रेडियो श्रोता संघ के साथी हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया, शुभा, राहुल और पायल, प्रियांश, ऋषि वर्मा हमें लिख भेजते हैं प्रमलागंज आलोट जिला रतलाम से। ये मेल है हिंगोली महाराज से शाहजी बोर्ड के, नंदा बोर्ड के, हनुमान बोर्ड के, और इसी गीत को अपनी फरमाइश में हम तक लिख भेजा है। लिखते हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तानी, सूरज, ज्योति, रेयांश, गुड़िया ठाकुर अमरेश्वर से, और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। ये मेल हमें मिला हुआ है, ये खत हम पहले उठा लेते हैं। बुटगंज छत्तीसगढ़ से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता, शशिकांता प्रजापति, और इसी गीत को पसंद करते हैं। ये हमारे मित्र हैं नरसिंहगढ़ पुरवा छतरपुर से दयाशंकर कुशवाहा और इनके साथ रिक्खी राम और परिवार वाले, गांव परसाटोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, कुमेंद्र मसिया और तुषारणी मसिया, इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। मेल हमें प्राप्त हुआ है जनकपुरी सहारनपुर के हमारे दोस्तों का, जॉन डिकास्ट्रो जी, आपका मेल पहले भी शामिल हो चुका है, अब लगातार एक ही मेल हमें भेज रहे हैं। और भी बहुत श्रोता हमारे रह गए हैं जो मेल नहीं भेज रहे, आप मेल भेजें।
यार छतरपुर 1976@gmail.com

gmail.com इस मेल आईडी पर। और एक और मेल हमें मिला हुआ है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और इनके साथ इनके परिवार वाली, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अंसारी और आदिबा दानिश अंसारी भी लिख चुके हैं। और इसी गीत में मिहिर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, राही सरिता गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, बदलापुर मुंबई से प्रणीता गवहानकर, सिद्धांत गवहानकर, अर्जुन गवहानकर और टुक टुक। इसी गीत में बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहानकर, सुमित गवहानकर, ध्वनि परी गवहानकर भी जुड़ चुके हैं। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, मेल भी हमें कम आ रहे हैं। श्रोताओं आप मेल करें yayarchhatarpur1976@gmail.com इस मेल आईडी पर। कुछ खत हम उठा लेते हैं। ये खत हमें प्राप्त हुआ है पिंपरी वाशिम से गवा सिंह राठौड़, सतीश, अभय, अजय, यज्ञ और कुशन राठौड़ का। और इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। ग्राम जामठी जिला अमरावती से मुकेश कासलेकर, दिनकर और विशाखा कासलेकर, विमल कासलेकर और अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजिए। मैसौर सीतामढ़ी बिहार से अरहान, हमजा, मुजम्बिल और मुहेरा नाज ने इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। लिख भेजते हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा, आकाश कुमार। और इसी गीत में ये पसंद है डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजपाल गजबी, राधिका गजबी, बेबी एनएस का तन्मय गजबी है। और इसी गीत को पसंद करते हैं, लिख भेजा है ये अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं रमेश कुमार जाजोरिया, गगनदीप और बीबी आरजू जाजोरिया, पटेल नगर मलोट पंजाब से अलीगढ़ डब्बल से बसंत सिंह चांद, राजकुमार, सुनीता और इनके परिवार वाले। इसी गीत को पसंद किया है खंडवल बुहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार, शीला, गायत्री धनजे, खुदी रोड मानपुर से। लिख भेजा है महिमा वैद, नीतू वैद, विनय वैद ने। और इसी गीत में चार मीना चौक गंडी पंडरिया से दरिया नामल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी, झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल सेतवाल और इनके परिवार वाले, मोहाली पंजाब से ओम प्रकाश मल्होत्रा अपनी फरमाइश के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र हैं ग्राम धोराबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड साहू, रुस्तम साहू, नेतराम साहू और भूपेंद्र साहू अपने खत के माध्यम से अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और इसी गीत को पसंद किया, कुछ और खत्म उठा लेते हैं। और ये खत हमें मिला हुआ है, लिख भेजा है, हाँ ये मेल ये खत मिला हुआ भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, विष्णु साहू, अंकिता, अमृता जोशी और लोकेश जोशी। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, ये अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। ये मेल हमें मिला हुआ है, पत्र हम पहले उठा लेते हैं। लिख भेजते हैं बिलराम गेट कासगंज से एम असलम शैफी, जैबुन निशाद शैफी और अकरम शैफी और आदाब खान अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने, अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है। लिख भेजते हैं, ये मेल हमें मिला हुआ है रोहिदास चौक पंढूरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे और ऋषि शिंदे और इनके परिवार वाले। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। ये कुछ और खत हमें प्राप्त हुए हैं, ये खत मिला हुआ है, ये खत लिखा हुआ है हमारे ये श्रोता है, हाँ ये मेल हम उठा लेते हैं, खत उठाते हैं। एक खत लिखा हुआ है दौलत बाग मुरादाबाद से जाफिर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी। और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र हैं पलेरा टीकमगढ़ से सुनील कुमार और इनके साथ हैं प्रमोद कुमार। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है, लिख भेजा है सनावद मध्य प्रदेश से शफी खत्री, इद्रीश खत्री, नूर मोहम्मद, इरफान मीना, कासिफ मीना और हासिफ मीना। आइए हम आप सबको सुनवाते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गाना।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद, आपका मन भावन कार्यक्रम, पसंदीदा कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर से, और आप सभी मेल कर रहे हैं aarchhatarpur1976@gmail.com इस मेल आईडी पर। कुछ और मेल हमें प्राप्त हुए हैं, और ये मेल मिला हुआ है आदर्श नगर मलोट पंजाब से शाइना और निवान शर्मा का, और इसी गीत में एक और मेल है दूल्हापुर मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह और इनके परिवार वालों का। इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। ये खत हमें प्राप्त हुआ है गांव परसटोला जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसीहा, सिलोचनी मसीहा और कुमेंद्र तुषारनी मसीहा का, और इसी गीत को पसंद करते हैं। हमारे ये मित्र हैं, लिख भेजा है, अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। ये हैं, हाँ, ये पत्र हमें प्राप्त हुआ है अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी और कृष्णा केवट का, और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। गांव भरमूंजी जिला आगर मध्य प्रदेश से खत के माध्यम से रघुनाथ मालवीय, रीना मालवीय, सुषमा, दुर्गा

परी और इनके परिवार वालों का। और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र, खत हमें प्राप्त हुआ है ईश्वर प्रसाद साहू, भावना साहू, नीलेश कुमार साहू, श्रद्धा साहू का भी मित्र नयापारा छत्तीसगढ़ से। और इसी गीत को पसंद करते हैं हमारे ये मित्र, अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं, खत के माध्यम से आप शामिल हो रहे हैं। और एक मेल भी हम उठा लेते हैं, ऊपर कोट मोहल्ला चौक नटी बुलंदर शहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज फरहीन, सुहान अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों का। और इसी गीत को अपने खत में अपने मेल के माध्यम से हमें लिख भेजते हैं, भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, पंकज और आयुषी गुप्ता। और इसी गीत में अपनी पसंद हम तक लिख भेजा है, ये खत हमें प्राप्त हुआ है, इसे भी हम शामिल कर लेते हैं। खत हमें लिखने वाले हमारे ये श्रोता हैं, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से जयवीर सिंह ठाकुर और डॉक्टर अमनदीप, अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल हमें प्राप्त हुआ है पाटन गुजरात से धीरज बी रबारी का, और इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये मेल अपनी फरमाइश के साथ हम तक पहुंचा रहे हैं हमारे ये श्रोता, बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि, रोशनी सारवा। इसी गीत को पसंद किया है हमारे इन श्रोताओं ने। ये खत हमें प्राप्त हो रहे हैं, कुछ मेल भी हम उठा लेते हैं, कुछ खत हमें मिले हुए हैं, लिख भेजा है हमें अपनी फरमाइश के साथ हम तक लिख भेजते हैं। ये है, ये खत है राजेश चौहान, संदीप चौहान, किशोर, सचिन और इनके परिवार वाले बनोसा दरियापुर जिला अमरावती महाराष्ट्र से। और इसी गीत को पसंद किया है पूनम सिंह, काजल सिंह ने, लिख भेजते हैं कानपुर उत्तर प्रदेश से। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, छत्तीसगढ़ धमनी राजम से लिख भेजते हैं समीलाल धीवर और युवांश धीमर, कुणाल, गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने। कुछ और खत हम उठाते हैं, इसी गीत में अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजी है, लिख भेजते हैं ग्राम बनगांव तहसील पटेरा जिला दमोह से प्रहलाद यादव, राकेश यादव, मनोज यादव, सुषमा यादव, संगीता, गीता, कविता, गोविंद यादव, ननूरा श्रीनगर उत्तर प्रदेश से, बलरामदास अहरवार, कस्तूरी आराधना, सोनिका उपमा और नैतिक वर्मा, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू और पंकज, तिरुपति सरोजनी कुंती साहू, अपनी फरमाइश हम तक लिख भेजते हैं। और इसी गीत को पसंद किया हमारे इन श्रोताओं ने, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलीश पवार, डैनी पवार और मास्टर मनीष भी जुड़ चुके हैं। आइए हम आप सबको सुनवा रहे हैं आप सबकी फरमाइश पर ये बहुत ही खूबसूरत गाना दामिनी फिल्म से। इस गाने में आवाज हमें गाने में दी है कुमार सानू, अलका याग्निक ने, नदीम श्रवण ने अपना संगीत दिया है और गीत को लिखा है समीर ने। आइए सुने दामिनी फिल्म का ये गाना।

0: श्रोताओं, एक संदेश के साथ कि अभी गर्मी का प्रकोप है, आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और लगातार आकाशवाणी से जुड़े रहें। इसी के साथ अपने दोस्त राजेंद्र अहिरवार को आज का कार्यक्रम यहीं समेटने की अनुमति दीजिए। अभी आप सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन भवन, जो आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने

0: राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय यह चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।